0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: We're just friends. So don't go looking
1: me no. with that. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: Hazar 97.1 FM.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
14: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Huzzah 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आइल
3: इट्स कमर्शियल टाइम.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
8: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: मैंने तुम ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Get ready to move.
8: It's all about the beats. Wow,
9: you are listening 97.1 FM.

नज़म से गजल बन गई, तू रोज़ी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई, नफ़रतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

तो जनाब जो इस वक्त मुझे गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं या मिल रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। तो जनाब चलते हैं आज के वेदर रिपोर्ट की जानिब।

तो जी ना बताएं, समझाएं, सुलझाएं कैसे आप सब लोग। कैफ अहवाल मगंग दंग उमागाइंदे वर्तनम सुगम सु मानु केम छो बोन जो और की हाल चाल है मेरा तितवाड़ा। रेनिंग सूट सबके पास है ना, जैसा कि आप जानते हैं मैं भी थोड़ा सा भीगा हुआ था, इसलिए जरा संभालते हुए अपने आप को दोबारा से आपके साथ हम कलाम होना चाहता हूँ। जनाब फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल जी 100% है इस वक्त, यानी 99 पॉइंट समथिंग नियर बाय। और जनाब इस वक्त नॉटिंघम शायर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया जा चुका है। जनाब बहुत ही तेज बारिश, जनाब ये वर्ड आज मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, डेफिनेटली मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे हम वतनों ये भी कह लेते हैं और ये भी कह लेते हैं साथ सावीनी जी वकार एंड लिसनर्स। तो जनाब आपको ये बताते चलें कि 14 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम इस वक्त रिकॉर्ड किया जा चुका है। 98.9% फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जी, 12 डिग्री जो सेल्सियस है वो ड्रॉप होने के चांसेस है नेक्स्ट 1 आवर में। और इवनिंग में मतलब बिल्कुल जनाब अबर आलूत रहेगा, हल्की फुल्की सी ठंड रहेगी आपके साथ, 9 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर जा सकता है, ठंड काफ़ी हो जाएगी। एंड टर्निंग ड्राई टुनाइट विद एक्सटेंसिव क्लियर स्काइज एंड वेरी लिटिल क्लाउड अराउंड, स्टेइंग ब्रीजी, बिल्कुल जनाब ब्रीजी रहेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई बारिश के इम्कान तो रात को नहीं होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आज की जो सुबह की मतलब अभी कुछ यानी नून तक की जो सिचुएशन है वो क्या है कि ओवरकास्ट विद आउटब्रेक्स ऑफ रेन दिस मॉर्निंग, दिस लोकली हैवी, टर्निंग ड्रायर लेटर दिस आफ्टरनून विद सनशाइन डिवेलपिंग बट इट विल बी ब्रीजी एज वेल। तो ये जनाब आफ्टरनून की और इवनिंग की और टुनाइट की मैंने आपको मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और प्रेडिक्शन बता दी। आपके क्या विचार हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं।

तो जनाब प्लान करने के साथ साथ ये भी देख लीजिए कि मौसम की सूरत हाल कैसे, अगर नॉर्थ शायद से बाहर आप जा रहे हैं कहीं, तो फिर मोटरवे पकड़ते वक्त ध्यान रखिएगा जिस सिमत आपका मुंह होगा, यानी जिस डायरेक्शन आप अपनी गाड़ी को घुमाएंगे वहाँ की मौसम की सूरत हाल कैसी है। हो सके तो किसी अपने दोस्त से, अपने अजीज से एक खूबसूरत सी उनको ना फ़ोन कॉल करके, जैसा कि आप मुझे करते हैं अक्सर, नहीं बात में कह रहा हूँ कि उनको कॉल करके सूरत हाल जान लीजिएगा, रास्ते कैसे हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको, तो आ जाना मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, तो कहकशाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का खूबसूरत सफ़र है, हल्की सी जनाब आप कह लें कि जैसे होती है ना बूंदाबांदी, इस तरह मजाज में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहती है तंजो मजाह वाली। बस आपने ये जज करना है कि इसमें से बूंदा कौन सी और बांदी कौन सी है। एनी वे थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया और आपने मुझे मैसेज किया, बेहद शुक्रिया। नाम नॉटिंघम शहर से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यानी किस एनजी से हैं बता दीजिए, किस तरफ से हैं, ताकि मैं नाम भी ले सकूं, बता सकूं। कोई बात नहीं, आपका नाम सही राज में रखा जाता है। इसके अलावा जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर क्रॉली से, आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेरी मच जनाब मोहसिन, थैंक यू वेरी मच, आप ऑलरेडी ट्यून इन हैं। और इसके अलावा जितने हमारे लिसनर्स लोकल नॉटिंघम शायर से, आपसे गुजारिश है कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई पुरखरोश लहजे से मनाएं, क्योंकि बारान रहमत है, ऊपर वाले ने रहमत अपनी बरसा रहे हैं, ऊपर वाले यानी आसमान से पानी बरस रहा है, टपक रहा है, और पाप भी धुलते हैं और माइंड भी फ्रेश होते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेहतरीन है कि अगर आप अपने काम काज और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की मामूल की तरफ निकल चुके हैं, तो फिर वापस ना हटिएगा बारिश के ज़्यादा होने की वजह से, कम होने थोड़ी देर के बाद एवरीथिंग विल बी ओके एंड नॉर्मल।

बिल्कुल आप जिंदगी मेरी और आपकी भी एक कहानी होगी जी, डेफिनेटली कुछ ट्रैक्स आपके लिए सेट कर रहा था और प्लानिंग में जो प्रोडक्शन वालों ने आज बताया, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कहते हैं कि थोड़ा सा रोमांटिक से यानी हल्के पुलके से ट्रैक रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आज का टॉपिक होता है, टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब। आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम बात कर रहे थे कोशिश की, कोशिश इट्स अ टॉपिक बेसिकली ट्राई करना, किसी भी चीज़ को कैसे ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। अगर आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ खूबसूरती के साथ सामने आ जाती है तो फिर तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जब आप करने के बाद उनका रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता जैसा कि आप सोच रहे होते हैं, जैसा कि आपने प्लान किया होता है, तो फिर क्या होता है जनाब। इस चीज़ को जो हैं सरकमस्टेंसेस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ये है आज का फिनोमिना। तो आप भी डेफिनेटली हमारे टॉपिक में शरीक होंगे मेरे साथ 01157100971। दिस इज लाइव व्हाट्सएप नंबर ऑफ माय स्टूडियो व्हिच इज 97.1 FM। अलावा से आपको ये बताते चलें कि जनाब डैप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद ट्यून इन कर सकते हैं। ऐप हमारी भी मौजूद है जनाब, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, गूगल स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे फजा रेडियो, रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल, और फिर एक खूबसूरत सा पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ फजा लिखा हुआ गोल्डन पेज है, येलो कलर में डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है, आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे जब आप प्ले करेंगे। तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

जो जी तो जनाब, गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ मैसेजेस हैं जो पड़े हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके साथ करनी है। जनाब आपको एक अनाउंसमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे नॉटिंगम में ना क्या बड़ी एंटरटेनमेंट रहती है, ये आपको बताते हैं जनाब। काफ़ी टाइम अभी अवेलेबल है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त और गज़ब किस्म की ना जनाब, एक जो आपको पता है इंग्लिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी और इंगेजमेंट का एक हिस्सा है, ब्रिटिश और साउथ एशिया कल्चर को मिक्स करने वाली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इन एसोसिएशन विद एक्सेलसियर नवाब ऑल द टाइम लोटस रोड नॉटिंघम जनाब, नाइट ऑफ फोक एंड सूफी म्यूजिक। इमरान शौकत अली, सन ऑफ शौकत अली खान, फोक एंड सूफी सिंगर, ये जनाब तशरीफ लेके आ रहे हैं। कब ये जनाब तशरीफ लेके आ रहे हैं? फ्राइडे 6 नवंबर 2026, जिसमें फीचरिंग यानी इनके जो साथ होंगे, पहले डेफिनेटली जो हमारे लोकल गुलकार हैं या कलाकार हैं वो होंगे मुनीर चौधरी, वेरी वेल नोन, आप सब जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त से हमारे हज़ारा और जो पटवारी जो ट्रैक्स हैं उनके मास्टर हैं, शाहजेब मिर्ज़ा हैं, अदनान मानुल्ला हैं, और इसके बाद अजहर रंगीला, और इसके साथ साथ होस्टेड बाय अजलाल बुखारी, द ग्रेट वन एंड ओनली यानक वाले जिन वाले भाईजान, थैंक यू वेरी मच जनाब। ये आज का ऐलान था। अजलाल भाई अगर आप सुन रहे हैं तो माजरत इग्नोर कीजिएगा, तंज़ो मज़ाक छोटी छोटी बात थी, तो वो आपने ग्लासेस पहनी हुई थी इसलिए मैंने कह दिया। एनीवे, डोर ओपन एट 6:30 PM फॉर स्पॉन्सरशिप एंड टिकट इंक्वायरी। आपने क्या करना है इंक्वायरी के लिए? आपने अजलाल बुखारी सबसे रब्ता करना है। अजलाल बुखारी का नंबर है 0759278-4471 एंड सेकेंड वन हसन कुरैशी 0744861-8578। Supported by Unique Financial Services, Madina Travel, Infinity Switch and Hayat Wedding Decor and Media Partner Radio Faza 97.1 FM.

वाह, अभी एक मैसेज आया कि जनाब ऑनलाइन टिकट है या नहीं। सॉरी, क्योंकि मैं जो है ना अपना पोस्टर मैं बिल्कुल सामने बड़ा ज़बरदस्त इनक्रेडिबल सा पोस्टर मार्केट में भी लॉन्च हो चुका है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है 97.1 FM के, उन पर भी आपको मिलेगा। नीचे जनाब ऑनलाइन बुकिंग की ऑप्शन है थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सका, पढ़ ही देता हूँ। वेन्यू एक्सेलसियर नवा 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL एंड अर्ली बर्ड ऑफर है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्ती प्राइस में बाय वन गेट वन फ्री अनटिल 15th of October 2026, यानी हार्डली आपके पास 7 से 8 दिन है। एंड आफ्टर 15th of October जो एडल्ट हैं वो 20 pounds विच इज़ वेरी नॉर्मल, और जो अंडर 12 किड्स हैं 10 pounds ओनली। तो जनाब ये ज़बरदस्त एक एंटरटेनमेंट का सेगमेंट आ रहा है, याद रखिएगा Friday 6th November 2026। स्टेट यूनिट 97.1 FM टॉपिक है जनाब आज का हमारा, कोशिश डिस्कशन इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। 01157100971 ये है मेरे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर, जिसे आप मुझसे रब्ता करेंगे और शामिल हो जाएंगे आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन में, विच इज गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम।

लिसनर्स ट्राइब पे अगर हम बात करें, कोशिश पे बात करें, तो दो पहलू इसके आते हैं। एक तो ऐसा है कि जो स्पिरिचुअल पहलू है जिसमें आप थोड़ी सी रूहानियत फैजिए तो इस मोड में जाते हैं, और इस मोड में जाने के लिए आपको स्विच करना पड़ता है डेफिनेटली, तो उसको स्विच नहीं करेंगे हम। ट्राई यानी कोशिश की बात करेंगे, जो हमारी नॉर्मल हालात ज़िंदगी है, नॉर्मल जो हालात हैं उनमें हम जब कोशिश करते हैं किसी भी काम की, वो काम अक्सर गलत होता है, या आप ये कह लें कि वो आपको समझ नहीं आता, या आप उस पर थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, कोशिश करते हैं उसको करने की, लेकिन आपकी कोशिश रायगां चली जाती है। याद रखिएगा, कोशिश रायगां जाती ज़रूर है, लेकिन उसके बरक्स यानी कोई भी डेफिनेटली, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, जो मकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है, यानी देर इज़ एक्शन ऑफ एवरी रिएक्शन। होता क्या इसमें कि जनाब, जब आपने कोशिश की, आपका जो गोल है, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव नहीं हुए, तो बेसिकली क्या होता है कि हम थोड़े से नाराज हो जाते हैं, अपने विचारों को एकदम बदल लेते हैं, और हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। तो जनाब, इसमें मेडिकल साइंस क्या कहती है, और मेडिकल साइंस के साथ साथ जो कुछ बड़े बड़े लखारी हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम कोशिश करते हैं, तो कोशिश के बाद जो बज़ाहिरन आपको एक रायगां नज़र आने वाली चीज़, यानी आपको समझ ना आने वाली चीज़ जो आपको नज़र आती है, तो वो बेसिकली वो तजुर्बा होता है, वो एक्सपीरियंस होता है जो आप उस रायगानी के बाद हासिल करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि जब आप कोशिश करें, अब अगर इसको आप मैच करें अपनी डेली लाइफ रूटीन में, मतलब आप कोई भी जॉब, किसी जॉब पे आप टीचर हैं, सेल्स की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कैरियर की, ड्राइविंग, कैबी, व्हाटएवर, जो भी हमारे हजरात हमारे साथ, हम जैसे नॉटिंघमशायर में साउथ एशियन कम्युनिटी बसने वाली है, अपनी डेली प्रैक्टिस में अगर आप देखें, तो आप किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई बात समझा नहीं पाता, या आप समझ नहीं पाते, तो आपको दोष दिया जाता है आपकी होल वर्किंग का, आपको दोष दिया जाता है आपकी होल मेहनत का। अच्छा, सो कॉल्ड मेहनत ही सही, लेकिन उसमें अगर हल्की सी छोटी सी कोशिश, किस चीज़ की, मोटिवेशन की, केयर, वो सफर्ड अ लॉट, कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गुड सेक, तुमने लास्ट टाइम भी ऐसे किया, ऐसे हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हम इतनी कॉस्ट भी करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने कर ली, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो देन यू विल बी द पार्ट ऑफ इट एज वेल। तो ये जो हल्की सी कोशिश है ना, ये बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी प्यारे तरीके से किसी ना किसी इंसान को मैनेज करती है, किसी ना किसी इंसान को सिखाती है, समझाती है, और उसको ये भी बताती है कि जब आपने किसी कोशिश को रायगां नहीं होने देना, यानी कोशिश आपने की और उसके बाद आपको रिजल्ट उस तरह के नहीं मिले जिस तरह के आप एक्सपेक्टेड थे या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर वो जो रायगानी है उसके नतीजे में मिलने वाला तजुर्बा, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, उसको गेन करने के लिए, उसको गेन करते हैं, तो ज़रा सी जो दिल में खालिश है, अगर उसको निकाल के उस तजुर्बे को के झरोंकों में जाके एक बार देखा जाए, तो उसके बाद आप दुनिया को बदल सकते हैं। मिसालें काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी, जैसा कि अगला हमारा सेगमेंट है पर्सनैलिटी ऑफ द डे, इसमें हम डिस्कस करेंगे जनाब KFC वाले बाबा जी को। बिल्कुल जनाब, जिंदगी में ऑलमोस्ट कहते हैं, एक रफ तादाद है कि 900 और मोर देन 1000 टाइम वो रिजेक्ट हुए, उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई, और बहुत ही मामूली सी रेसिपी जो थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, और फिर इन द एज ऑफ 62 ईयर्स या 60 ईयर्स उन्होंने वो कामयाबी हासिल की, और फिर 83-84 साल तक उनकी ज़िंदगी चली, वो ज़िंदा रहे, लेकिन उन्होंने अपनी वो कामयाबी ज़िंदगी के तकरीबन आखिरी हिस्से में देखी, यानी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द लाइफ। तो कोशिश के हवाले से ये भी मोटिवेशन हमारे साथ रहेगी। अगर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है ट्राई के हवाले से, कोशिश के हवाले से, तो डेफिनेटली मुझसे रब्ता करें 01157100971।

और इसके अलावा हमारी जितनी बाकी ट्रांसमिशन उनके बारे में आप जान सकते हैं कैसे, उनके बारे में जानने के लिए जनाब आपको ट्यून करना पड़ेगा डेफिनेटली 97.0 किस पे FM पे, और इसके अलावा डैप पे हम फजा के नाम के साथ अवेलेबल हैं, live.radiofaza.co.uk स्ट्रीमिंग पॉइंट जहां से आप लाइव स्ट्रीम पे हमें सुन सकते हैं, और जो हमारी ट्रांसमिशन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं जो मैं कह रहा था उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट विच इज radiofaza.co.uk।

0: बाद आया मैसेज है कि जनाब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की खूबसूरत सी सुबह की धमाकेदार एक पैकेज के लिए आपने जनाब लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0115710971। ये वो नंबर है जनाब व्हाट्सएप का जिसपे आप मुझे मैसेज करते हैं, इसी पे व्हाट्सएप आप कॉल करें तो जनाब डेफिनेटली आपकी कॉल आंसर की जाएगी और आपको शामिल किया जाएगा गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम। और अक्सर लोग इस बारे में जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितने भी मेरे सामईन जीवकार हैं उनसे गुजारिश ये है कि आपको पता है कि आप जो गुड वाली मॉर्निंग है वो गुड कैसे होती है, जब आप लोग ट्यून करते हैं 97.1 एफएम को या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे, हमें यानी रेडियो फजा की जो प्रोग्राम है जो ट्रांसमिशंस हैं उनको। और ठीक रहा जनाब, एक बजे तक आपको भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, कम्युनिकेशन हमारे दरमियान रहती है। ताकि ना रबतों को भुलाया ना जा सके और जब कभी रबता ना रहे। रबता ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक सब्जेक्ट है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इस पर अपने विचार आप देंगे मुझे। कल कल का ये टॉपिक होगा जी हमारा डेफिनेटली। बात में कह रहा था कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं हमारे नॉटिंघम शहर में या किसी भी जगह पे, जैसे कि फजा 97.1 एफएम, बेसिकली फजा इज द फैमिली ऑफ कंप्लीट मीडिया एंड इट्स अ हब ऑफ डेफिनेटली वेरी प्रोफेशनल एंड डायरेक्टरशिप होल्ड करने वाले जो कैरियर के लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस टीम का हिस्सा हैं। प्रमोट भी करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके बाद जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से हैं आपके प्लान वो आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम उनको प्रमोट करेंगे और फिर एक खूबसूरत सा सफर शुरू होगा आपका भी हमारे साथ। जनाब गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में अभी आने वाली है कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपको ये बताता चलूं कि जनाब कमर्शियल ब्रेक के उस पार जब मैं आपके पास वापस आऊंगा तो फिर जनाब पर्सनैलिटी ऑफ द डे का सेगमेंट होगा। कोशिश ट्राई पे थोड़ी सी विशेष टिप्पणी, थोड़े से विचार अपने शेयर करूंगा आपके साथ और सेगमेंट के बाद कुछ ट्रैक्स बड़े जबरदस्त से आप लोगों के लिए मैंने रखे हुए हैं, अपने लिए भी रखे हैं डेफिनेटली। इसलिए मैं कहता हूँ स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 एफएम एंड एंजॉय कीजिए कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के उस पर रहती है आपसे मुलाकात, स्टे ट्यून एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
4: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

A very warm welcome and welcome back Radio Fada 97.1 FM Live Studio se ek bar phir aapka mezban Asir Khan. Good morning Nottingham ji. Good wali morning Nottingham mein aapko dil kiya tha gehraiyon se khush aamdeed kehte hue. Aur welcome hai ji un smarton ka jinhone is waqt mujhe tune kiya 97.1 FM pe ya phir DAB pe ya phir hamari app pe. हमारे दरमियान हाई लुथी कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के उस पर दोबारा मैं आपके साथ गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में सेगमेंट लिए पर्सनैलिटी ऑफ द डे. आज की जो पर्सनैलिटी है जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेट KFC पर्सनैलिटी

बिल्कुल ना, द पर्सनैलिटी इज द ग्रेट क्लोनल सेंडर्स बेसिकली, जैसा कि आपको बताया कि कोशिश हमारा सेगमेंट है, और ये सेगमेंट भी कोशिश हमारा टॉपिक है, और ये सेगमेंट भी रिलेट करता है बेसिकली टॉपिक के साथ ही, जितने भी हमारे अगला जो सेगमेंट हमारा फजा आइडिया का, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बेसिकली मकसद ये है कि जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने डे को प्लान करते हैं, यानी आज के खास दिन के हवाले से, तो आपके सामने सबसे पहले जो कोशिश में इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो ये रहती हैं कि आपके पास कल के दिन का रिजल्ट रहता है, या रात को जब आपने क्लोज किया अपनी वर्किंग को खैरबाद का, तो फिर आपको कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस है जो सामने आए, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें अभी तक आप उलझे हुए हैं। सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उन गुत्थियों को सुलझाना है। वहाँ से उलझते जब आप आज के दिन में कदम रखेंगे ना, और फिर आगे नए टारगेट्स, नए चैलेंजेस आपके सामने होंगे, तो डेफिनेटली फिर आप और उलझ जाएंगे, और इस तरह फिर जो मामलात हैं वो बिगड़ सकते हैं, संभल नहीं सकते, और जो आपको एक जीनियसपन है, जो कुदरती तौर पे ऊपर वाले ने आपको एक पावर दी, हर इंसान के अंदर वो पावर है, वो जीनियसपन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप हल्की सी तारीकी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन और जहनी तनाव का शिकार इंसान हो जाता है। तो बेसिकली क्या किया जाता है इसके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मैंने कुछ टाइम पहले स्टडी किया या हमारे प्रोडक्शन वालों ने कुछ तैयार किया, मुख्तलिफ ऑथर हैं जो इस बारे में काफ़ी ज़बरदस्त सी तहरीर करते हैं, और कोशिश के हवाले से जो ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें हैं, जिन जो हमारी रोज़मर्रा की, यानी कोशिश करें कि किसी से गलत बयानी ना करें। अब गलत बयानी में क्या चीज़ें आती हैं, गलत बयानी में सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है, हम करना नहीं चाहते, सरकमस्टेंसेस, हालात, इन्वायरमेंट कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब हालात आपके कंट्रोल से आपके आपे से बाहर होते हैं, तो फिर आपकी गलत बयानी यानी मिस कमिटमेंट, या उसको आप कह लेंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं, तो लोग फिर उसको बड़े चाको चौबंद तरीके से एकदम इनहेल करते हैं, और फिर उनका गुस्सा बाहर आता है, फिर मूड ख़राब होता है, और इस तरह हमारी जो खूबसूरत सी सोसाइटी, हमारी जो नॉटिंगहमशायर की स्पेशली जितनी भी साउथ एशियन कम्युनिटी आपस में मिलके रहती है, इस खूबसूरत सी कम्युनिटी में एक हल्की सी हलचल पैदा हो जाती है। तो अब हमने कोशिश क्या करनी है आज के दिन, मेरे जो विचार हैं, अगर आपके विचार भी मेरे विचारों के साथ मिलते हैं, आपके जहन भी मेरी असवाज का साथ देते हैं, या आपके जहन मेरी बातों के साथ, मेरे हरूफ के साथ मैच करते हैं या दौड़ते हैं, तो फिर गुजारिश ये है कि मेरी तरह आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आज के दिन हम किसी से गलत बयानी ना करें, या आप ये कह लें कि गलत बयानी, बल्कि कोई प्रॉमिस ना करें। हमने कोशिश करनी है बेसिकली, लेकिन अगेन डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, हालात पे। अब मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेटल हैं, या हम अपने आप को मैनेज करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं आगे, किसी की एक्सटेंशंस हैं, कोई ILR की तरफ जा रहा है, कुछ अपनी जॉब को दो दो तीन तीन शिफ्टों में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर्स के अलावा, जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं, वीकेंड्स पे हम अपने आप को मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हैं हम लोग साउथ एशिया के, हम अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखते हैं। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, तो यहाँ से शुरू होती है हमारी जहनी नशो नुमा की एक दबाव वाली अफजाइश है नस्ल, यानी प्रेशर स्प्रिंग। बिल्कुल जनाब, वही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, के हर अमल का एक रद्दमल, यानी देयर इज एक्शन ऑफ एवरी रिएक्शन, जो क्या करता है कि जब तक आप उसको बाउंस करते रहेंगे, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग बेसिकली आप उसको एक हद तक बाउंस करेंगे, वो बाउंस बैक लाजमी करेगा, और जब इन्वायरमेंट, हालात आपको बाउंस बैक करते हैं, यानी वो रिप्लाई देते हैं आपको, बड़ी देर तक हालात आपके अगर फेवर में रहते हैं, करें सितारे गर्दिश ने जी ऐस बंदे दे, अब बंदा ना इसने सितारे गर्दिश, उसमें होता क्या बेसिकली, सितारे गर्दिश में कहने का मतलब ये होता है, इल्मे नजूम डेफिनेटली देर इज, आई एम नॉट अ फार्मिस्ट, लेकिन सिर्फ एक जो महावरतन बात होती है नॉर्मली, कि इसके सितारे गर्दिश में उनका मेन मकसद ये होता है कि जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो हाल है, वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो उस वक्त में की हुई कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी बात जो आपको समझाने में
लोग परेशान हों या आपको समझ आने में आप लोगों को ना समझा पा सकें या आपको कुछ हालात ऐसे हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं लेकिन लोग उनको जानते हैं कि वो ठीक हालात हैं और ऐसा ही होता है, तो बज़ाहिरन आपको थोड़ा सा दुख लाजमी होता है कि यार हालात मेरी फेवर में नहीं है और उसके बाद भी मुझे जो मोटिवेशन है वो नहीं दे रहा कोई भी। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमने सबसे पहले उन हालात को थोड़ा सा स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम किसी से गलत बयानी या चर जुबानी नहीं करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट हमारी फेवर में नहीं है। ये चीज़ आपने एक्सप्लेन कर दें पहले तो इससे हम एक कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। जब आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे ना, हल्का सा लोग कहते हैं ना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए अपने आप को, मैं कहता हूँ डेफिनेटली करें, अगले की बात भी सुने, आपकी गलती है उस गलती को

0: timeless human being. You're not late. Just start. So, what's your story?
1: जी तो लिसनर्स, यू आर नॉट लेट, जस्ट स्टार्ट। तो ये थी ना जबरदस्ती मोटिवेशनल स्टोरी, 1009 मरतबा कोशिशें की, ट्राइज करते रहे और उसके बाद अगर वो गिव अप कर जाते उस टाइम पे आके कि जिस टाइम पे उन्हें अपनी गाड़ी में सोना पड़ा और कुछ थोड़े से फूड के साथ गुजारा करना पड़ा, शेम्ड भी होना पड़ा लोगों के सामने, अपनी जो आप कह लें कि सो कॉल्ड नाकामी उस वक्त की, वो छुपानी भी पड़ी। लेकिन अगर उस वक्त ये इंसान गिव अप कर जाता तो इस वक्त हम जो कंटकी फूड कंपनी का ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा हम चिकन एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड वाइड 20,000 से ज़्यादा ब्रांचेस, एक अंदाजे के 27,000 मोर देन ब्रांचेस हैं, अपनी कंपनी को सेल करने के बाद भी स्पोक्स पर्सन रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने इसको बनाया कैसे है। तो जनाब, ये हमारे पास जो मेन मोटिवेशन है, या आप ये कह लें कि जो कोशिश है, कभी भी रायगा नहीं जाती। अगर रायगानी का अंदाज़ा आपको हो तो फिर आपको ये पता चलेगा कि उससे हासिल होने वाला, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी टॉपिक के, उससे हासिल होने वाली जो रिजल्ट है, जो बेसिकली नीड जो निकलती है उसमें से, वो बेसिकली क्या निकलती है, वो तजुर्बा निकलता है, एक्सपीरियंस निकलता है। वो एक्सपीरियंस ही आपको अगली कोशिश करने का मौका देता है। इसलिए जनाब मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टे ट्यून इन फजा 97.1 FM। लेकिन अभी आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बहुत बातें हो चुकी हैं, बारिश का मौसम है, खूबसूरत से ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं। अब जनाब ये जो टाइम है तकरीबन 8 से 9 मिनट, ये सुनेंगे आप खूबसूरत से ट्रैक्स, इसके बाद हाइल होगी हमारे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक, और जब कमर्शियल ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो फिर हमारे पास सेगमेंट होगा बिल्कुल फजा आइडिया का। आइडिया क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आज का क्या है, क्या है आज के दिन आपने क्या करना है। लेकिन कोशिश, हमारा टॉपिक 0115710971, ये नंबर जिस पे आप मुझे मैसेज करेंगे, अपनी विशेष शिप में अपने विचार मेरे साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आप हिस्सा बन जाएंगे गुड मॉर्निंग नॉटिंगम का।

ना ट्रैक में साथ साथ प्ले करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी जान छोड़ दूंगा तो पॉसिबल सी बात है जी, बिल्कुल भी नहीं, आपकी जान छोड़ दूंगा डेफिनेटली, तंजो मजाक में ये बात कर रहा हूँ। और अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुने तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

0: तो उसे नैना।
1: लेकिन अब जिनके नैना मिले हैं उनके नैना भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये मैशअप है ओल्ड वर्सेस न्यू का, और ये हमारे जो बॉलीवुड ट्रैक्स हैं सदाबहार ट्रैक्स हैं। सुनिए ड्राइव करते हुए, एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से एंटरटेनमेंट के सेगमेंट को। बेसिकली कमर्शियल ब्रेक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिर खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए और वेलकम वेलकम वेलकम ये उन समातों के लिए है जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। तो इन खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक आपने सुनी, अच्छे से ट्रैक आपके साथ थे खूबसूरत से मौसम में और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम आपके माइंड को एक्टिव और स्वस्थ रखने के लिए शामिल हाल है आपके साथ और जैसा कि आप हैं हमारे साथ। एक बार फिर से रिमाइंड करा था जुनी नव, आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं 97.1 एफएम डेफिनेटली एफएम की फ्रीक्वेंसी है और इसके अलावा डैप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करने का तरीका जनाब नए लिसनर्स के लिए है कि आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल या फजा रेडियो, तो जनाब फिर आपके पास आ जाएगा एक पर्पल कलर का बैकग्राउंड फजा लिखा उसके ऊपर आएगा गोल्डन या बीच कलर में या येलो कलर में। ऑलमोस्ट आप उसको डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे और जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्वाद की नजर आपको कहते हुए गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब आज का जो टॉपिक है वो है कोशिश, ट्राई करते रहना। इस पे विशेष टिप्पणी क्या है आपकी, क्या विशेष है, क्या टिप्पणी अगर है तो मुझे बताइएगा। आपके विचार क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, या आप किस नुक्ते नज़र से इस नज़रिए को, इस टॉपिक को देखते हैं। 0115710971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी लाइव ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद। व्हाट्सएप पे जनाब आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। और बाकी भी जितने हमारे लिसनर्स हैं उनको आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। जनाब सेगमेंट है हमारा ये वाला फ्राइडिया का, आज का आइडिया क्या है देखते हैं, रहिए मेरे साथ।

A Night of Folk and Sufi Music with Imran Shaukat Ali. Very famous folk and Sufi singer हैं. Sufi singer हैं हमारे पाकिस्तान के. बिल्कुल जनाब साउथ एशिया की शान हैं ये. शौकत अली खान के साहबजादे हैं. ये जनाब हमारे पास तशरीफ लेके आ रहे हैं एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG5 में गालिबन जी NG51EL. और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एवेन्यू है. मार्की कॉन्सेप्ट है. बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं. और जब ऐसी कोई महफिल हो तो फिर इश्क व सुरूर की महफिल होती है और इंसान मज़ीद डूबता जाता है उसके रंगीनियों में. इनके साथ मौजूद होंगे हमारे जो लोकल गुलकार हैं, लोकल कलाकार हैं, मुनीर चौरी साहब, एवरीबॉडी नो शाहजेब मिर्ज़ा, अदनान मानुल्ला, जनाब द ग्रेट लेजेंड हमारे जनाब मानुल्ला साहब के साहबजादे हैं ये अजहर रंगीला, और होस्टेड बाय द फेवरेट एंड वन एंड ओनली जलाल बुखारी जी. कब? फ्राइडे 6th of November 2026. Doors open will be sharp 6:30 PM. To now for sponsorship and tickets inquiry, aapne raabta karna hai Jalal Bukhari sahab se. Number hai ji 0759278471. Hasan Qureshi hai inke saath, inka bhi number le lijiye 0744861857. Supported by janab Infinity Switch, uske baad Madina Travel, Hayat Wedding Decor, Unique Financial Services और मीडिया पार्टनर रेडियो फजा. वेन्यू आपको बता दिया एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL. अर्ली बर्ड ऑफर अवेलेबल है जनाब. बाय वन गेट वन फ्री अंटिल 15th of October 2026. आफ्टर 15 जो एडल्ट की प्राइस है £20 और जो किड्स हैं अंडर 12 वो £10 चार्ज किए जाएंगे. तो जनाब इस अर्ली बर्ड ऑफर से भी फायदा उठाइए, आज ही रब्ता कीजिए और शामिल होइए जबरदस्ती सूफी महफिल में, ताकि आपको मजीद अंदर की रोशनियों से आपका निखार और लोगों के सामने है. सो स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM एंड डैब. अपने मेजबान नासिर खान को देनी होगी आपको अब इजाजत, लेकिन हम मिलेंगे जरूर आपसे, क्योंकि कल भी है आनी है. और जैसा कि जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि सैटरडे तक हमारा और आपका साथ रहे. अभी हमारे दरमियान हायल होने वाली कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कमर्शियल ब्रेक से पहले कुछ हल्के फुल्के से ट्रैक एक बार फिर मैं आपके समातों की नजर किए देता हूं. इंजॉय कीजिए एंड गुड बाय गुड बाय गुड बाय नॉटिंघम.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
8: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
7: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। टू द लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, और फिर प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स। सो वो तमाम द ट्रैक्स जो हमारे लिसनर्स रोजाना सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमें सजेस्ट करते हैं, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं सबको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। सो वेल लिसनर्स, आज के दिन के हवाले से सबसे पहले आप बताइएगा कि आज आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने का इरादा रखते हैं, और साथ ही साथ अगर आज के दिन कोई आपकी जिंदगी का है खास दिन या फिर है कोई खास इवेंट, सो उसके बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं अपने दिन के स्पेशल डेज की। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि हर आने वाला नया दिन किसी न किसी इंसान की जिंदगी में होता है स्पेशल, सो हो सकता है कि आज का दिन जो कि है मेरे लिए एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सा नॉर्मल सा डे, आपके लिए हो बहुत ही स्पेशल डे। सो अगर आज का दिन है आपके लिए खास स्पेशल, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपने स्पेशल डेज को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ लिसनर्स, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि लिसनर्स, आप सभी को मालूम है कि दीवा डायलॉग ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम है बल्कि है आप सभी का, हमारे तमाम तर चाहने वालों का। सो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हमें बताएं, सजेस्ट करें, हम उन्हीं चीज़ों को प्रोग्राम में शामिल करें। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा सकते हैं। सो उसके लिए हमारा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नंबर है जिसे करना होगा आपको सेव। सो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0115710971। सो ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि है एक रابطے का जरिया। सो ये नंबर आपको हमसे और हमें आपसे जोड़ता है। सो इस नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं हमसे वो तमाम तर बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से भी, अपने किसी चाहने वाले से, किसी लव्ड वन से, या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसका आपको लगता है कि वो आपको ना सिर्फ सुनेगा बल्कि आपको समझेगा भी। वेल लिसनर्स, साथ ही साथ आप हमें अच्छे अच्छे ट्रैक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए उस टॉपिक को डिस्कस करूं, सो वो भी आप हमें बता सकते हैं थ्रू दिस नंबर। अब जब बात कर लेते हैं किस तरह से आप रेडियो फजा 97.1 FM के तमाम तरह प्रोग्राम्स को ट्यून कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, हमारे रेडियो स्टेशन के तमाम तरह प्रोग्राम्स यानी दीवा डायलॉग को ट्यून करने के लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे जो कि है radiofaza.co.uk। सो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी आरजे के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। सो वेल लिसनर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है दमदार और आप अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, तो वो भी आपको पता चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ आप सभी से शेयर करती चलती हूँ, अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस हासिल करना जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के हमें आसानी ट्यून कर सकें, सो उसके लिए आपको करनी होगी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल। आइए आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को।

सो सबसे पहले आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, क्योंकि अगर आप हैं एंड्रॉयड यूजर तो आपको जाना होगा गूगल स्टोर पर, लेकिन अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर। वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो लिसनर्स, जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा, क्योंकि अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ। सो आपका जिंदगी के ये जो 2 घंटे हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम इनको मीनिंगफुल बनाएं, साथ ही साथ मालूमात का जखीरा भी आपसे शेयर किया जाए और खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स भी आपको सुनाए जाएं। सो विल लिसनर्स, डिवा डायलॉग के सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपसे शेयर करते हैं हमारे आज का टॉपिक, क्योंकि हर नए दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए एक नया यूनिक डिफरेंट किस्म का टॉपिक, क्योंकि मेरा फोकस इस चीज़ पर होता है कि आपसे मालूमात को शेयर किया जाए और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू की जाए जो कि रूटीन से ज़रा हटके हों, ताकि हमारे लिसनर्स को मोटिवेशन मिले, इनोवेशन मिले, साथ ही साथ उन्हें मालूम हो कि किस तरह से वो डिफरेंट तरह के सिचुएशंस पे कैसे खुद को टैकल कर सकते हैं। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है तो हमें बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी इस ट्रैक की। सो गाना है आसिम अजहर की आवाज में, आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर आज का टॉपिक करते हैं शेयर।

0: जलन हो रही है।
1: थोड़ी बहुत होगी।
0: अम्मी कब आएंगी?
1: थोड़ी देर में आ जाएंगी, बातें मत करो वरना लकीरें पड़ जाएंगी।
2: कितनी देर और?
1: बस तैयार है,
2: बहुत वक्त लग रहा है।
1: दो मिनट दे, मैं ला रहा हूँ।
2: ये रोएगा तो नहीं?
1: नहीं नहीं, नहीं रोएगा।
2: ठीक है, जल्दी आओ।

चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसे रिलीज हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं इसे काफ़ी मरतबा लूप पर सुन चुकी हूँ। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने सोचा कि आप सबकी भी भरपूर फरमाइशें आ रही हैं, तो क्यों ना इसे प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सो वेल लिसनर्स, प्रोग्राम को यानी डीवा डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जाने। सो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ना तो किसी सेलिब्रिटी की ना ही किसी लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की। सो आज हम बात करेंगे आपकी अपनी पर्सनालिटी की। सो वेल लिसनर्स, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक टॉपिक है। दैट इज़ द मेन रीज़न, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी से बेहद डिफरेंट होती है, और अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है। सो आज हम देखते हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपकी मालूमात में कितना इजाफा करती है और क्या इसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक तरीके से जाँच पाएंगे या नहीं। सो वेल लिसनर्स, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में इंटर करते हैं और कुछ भी कहे बिना उनकी प्रेजेंस आपको फील होने लगती है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी हमें पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव नहीं लगती। सो पर्सनैलिटी असल में होती क्या है? क्या पर्सनैलिटी सिर्फ लुक्स का नाम है, या फिर पर्सनैलिटी का असल मतलब होता है इंसान के अंदर मौजूद कॉन्फिडेंस? सो अगर इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स देखे जाएं तो क्या आपको लगता है कि इंट्रोवर्ट पर्सन की पर्सनैलिटी वीक है? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है? सो आज हम इन तमाम तर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, ना सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे बल्कि आपको तमाम तर सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का शो आपने सुनते हुए बहुत ही ध्यान से सुना है क्योंकि पर्सनैलिटी का टॉपिक दूसरों को जज करने के लिए नहीं इसलिए डिसाइड किया गया है ताकि आप खुद को समझ सकें, खुद को जांच सकें। सो वेल लिसनर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि पर्सनैलिटी एक्चुअली होती क्या है। सो सिंपल से वर्ड्स में अगर हम समझें पर्सनैलिटी क्या है, तो पर्सनैलिटी बेसिकली किसी इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और रिलेटिवली कंसिस्टेंट पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। यानी आप किसी सिचुएशन में किस तरह सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन किस तरह से है, और डिफरेंट सिचुएशंस में क्या आपका बिहेवियर जनरली किसी डायरेक्शन में जाता है या नहीं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। और ये सब आपको बताते हैं कि इधर यू आर अ इंट्रोवर्ट आर यू आर अ एक्सट्रोवर्ट। सो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि पर्सनैलिटी और अपीयरेंस सेम चीज़ें कभी भी नहीं होती। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को उसकी ज़ाहरी अपीयरेंस से जज करते हैं या फिर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। सो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। सो यही डिफरेंस आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सो बेसिकली आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, स्टाइलिश हो सकते हैं, ब्यूटीफुल या हैंडसम भी लग सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी स्ट्रांग नहीं बनाता। सिमिलरली एक सिंपल लुकिंग पर्सन एक पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकता है। सो पर्सनैलिटी में आपकी कम्युनिकेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स, वैल्यूज, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, सोशल बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न्स, ये वो तमाम तर एस्पेक्ट्स हैं जो कि बेहद अहम रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम किसी इंसान को पहली दफ़ा मिलते ही साथ ही सोच लेते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट बट दिस पर्सन हैज़ अ सच अ गुड पर्सनैलिटी। सो और एक्चुअली किसी पर्सन की मल्टीपल सिग्नल्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो उसका बोलने का तरीका, दूसरों को सुनना, रिस्पेक्टफुली बिहेव करना, प्रेशर में रिएक्शन और इवन छोटी छोटी सोशल हैबिट्स, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं जब आप किसी भी नए इंसान से मिलते हैं, खासतौर पर उन लोगों से जिनसे आप पहले कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिले होते। अचानक से आप मिलते हैं तो आपकी नज़र इन तमाम तर चीज़ों पर जाती है। सो वेल लिसनर्स, आप सभी के लिए है मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। सो आप मुझे मैसेज करके बताइए आप किसी इंसान की पर्सनालिटी में सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं? कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, रिस्पेक्ट, या फिर उनका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल? सो मुझे आप तमाम तर लोगों के इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं उसका तरीका भी आपको बताती हूँ। 0115710097। सो अच्छा, मैं आपसे अपना शेयर करती हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू।
सो जब भी मैं कभी किसी भी इंसान से मिलती हूँ जिससे मैं ज़िंदगी में पहले कभी भी ना मिली हूँ, तो जो फर्स्ट चीज़ है जो मैं उस इंसान में नोटिस करती हूँ वो उसका द वे ऑफ टॉक। अच्छा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर अ पर्सन इज़ वेयरिंग अ क्लासिक क्लॉथ्स और वेयरिंग अ सिंपल क्लॉथ्स, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहा होता है या फिर दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो चीज़ मेरे लिए बेहद मैटर करती है। वेल, हो सकता है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो, सो आई एम रियली क्यूरियस कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा इसको लेके। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। सो वेल लिसनर्स, जितनी देर में आप हमें जवाब देते हैं, हमें एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश मौसूल हुई है, और जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी फरमाइशों का भरपूर ख्याल रखते हैं, तो उसी के लिए मैं प्ले कर देती हूँ आपका रिकमेंड किया हुआ खूबसूरत सा ट्रैक। सो मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, सो स्टे ट्यून विद अस।

0: लिसनर्स, अब से बात करते हैं पर्सनालिटी बोर्न और मेड। तो क्या पर्सनालिटी आपकी पैदाइश से बनती है या फिर आप उसे खुद बनाते हैं? सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या पर्सनालिटी पैदाइशी होती है या हमारी पर्सनालिटी टाइम के साथ साथ डेवलप होती रहती है। सो मेरा जवाब तो यही है कि दोनों का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटी टेंडेंसीज टेम्परामेंट से रिलेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे जिनकी नेचर बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होती है, और कुछ बच्चे जो बाय बर्थ ही बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो कम्युनिटी से या फिर सोशल गैदरिंग्स में जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो एक से ज़्यादा लोगों से मिले, लोगों से इंटरेक्ट करें या फिर उनसे बातचीत करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पर्सनैलिटी कम्प्लीटली फिक्स्ड होती है। कभी कभार इन्वायरमेंट भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, कल्चर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन और डिफरेंट चैलेंजेस, ये सब इंसान के बिहेवियर, पर्सनैलिटी डेवलप करने और इन तमाम चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन नेचुरली शाय है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी लाइफ सोशली अनकम्फर्टेबल रहेगा। हो सकता है कि कल को जब उसका उठना बैठना ऐसे लोगों में हो जो कि बहुत ज़्यादा सोशल हो, या फिर वो किसी वर्क प्लेस पर जाए, तो हो सकता है कि टाइम के साथ साथ वो खुद को थोड़ा बहुत चेंज कर ले या फिर इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाए। क्योंकि कहा जाता है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह हुए बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन भी लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा पेशेंट, इम्पैथिक और इमोशनली मेच्योर बन सकता है। पर्सनैलिटी को एक फिक्स लेवल समझना सही नहीं होगा। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहती है। आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के हर स्टेज में अपने ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वेल लिसनर्स, अगर मैं आपसे अपनी एक एग्जांपल शेयर करूँ, सो व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी। आई यूज़ टू टॉक अ लॉट ऑफ पीपल, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सोशल गैदरिंग्स करना, इधर उधर जाना या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना। बट बाय द टाइम आई रियलाइज के इट्स नॉट फ्रॉम मी, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोशली हैंग आउट करते हैं, सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो डैट इज़ द मेन रीज़न कि उन सभी को देखते हुए मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी और मैंने खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज किया। सो इसी तरह से आप भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फैमिली से और ख़ास तौर पर अपने कल्चर के मुताबिक। अच्छा, सबसे मज़े की बात आपसे शेयर करती हूँ कि पर्सनैलिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि पर्सनैलिटी इंसान को वक्त के साथ साथ ग्रो करती है। सो हो सकता है कि आज आपकी पर्सनैलिटी बेहद शाय हो, कल को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। सो वेल लिसनर्स, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल भी किया था कि जब कभी आप किसी भी रैंडम पर्सन से ज़िंदगी में पहली मर्तबा मिलते हैं तो आप क्या चीज़ नोटिस करते हैं। आप सभी के जवाब मुझे मौसूल हुए हैं और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से इत्तेफाक किया कि आप किसी भी इंसान की ज़ाहरी सूरत शक्ल को नहीं देखते, बल्कि इस चीज़ को मैटर करते हैं कि उसके मैनर्स कैसे हैं, वो किस तरह से बातचीत कर रहा है और दूसरे लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। सो वेल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की जानिब। सो वेल लिसनर्स, जहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी की, वहीं अगर हम पर्सनालिटी के डिफरेंट ट्रेट्स को एक्सप्लेन ना करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब हम ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। फिलहाल के लिए हमें चलना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। हम बस यूं गए और यूं आए। सो वेल लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले। Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
2: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जय तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आज ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि आपका अपना कम्फर्ट प्लेस, जहाँ हम बात करते हैं उन तमाम तरह टॉपिक्स पे जो हमारे लिसनर्स को प्रोवाइड करते हैं कम्फर्ट, ना सिर्फ कम्फर्ट बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। सो वेल लिसनर्स, जहाँ हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, वहीं हम रोज़मर्रा गॉसिप्स की भी बातचीत करते हैं। सो वेल लिसनर्स, बताइएगा आप ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि इस वक्त मौजूद हैं ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या फिर अपने कामकाज की तरफ है रवाना दवा। सो अगर आप रास्ते में हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, तो एक बहुत ही हमदर्दाना सी एडवाइस है आप सभी के लिए कि जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों तो बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग बहुत मुश्किल टास्क है और इसे बहुत सारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि एहतियात किया करें, ख्याल रखा करें, क्योंकि कहीं पर देर से पहुँच जाना इज़ वे बेटर देन कहीं ना पहुँचने से। सो फर्ज़ करें कि अगर आप जस्ट बिकॉज कि आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो हो सकता है कि बाद में आपसे जुड़े तमाम तरह लोगों को कितने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। सो इन्हीं तमाम तरह चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एहसास करना है और आराम से स्लो स्लो ड्राइव करनी है। सो वेल लिसनर्स, दोबारा से अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि है पर्सनालिटी, जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान की पर्सनालिटी दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ के पर्सनालिटी की किस कदर कितनी टाइप्स होती हैं। सो बातचीत तो करते रहेंगे क्योंकि ये गपशप का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन अभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है, तो क्यों ना इस ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए, और आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

0: sanam.
1: तो लिसनर्स दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक को, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी के ऊपर. सो सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि अच्छा एक्चुअली पर्सनालिटी क्या होती है, क्या पर्सनालिटी बाय बॉर्न होती है या फिर आप अपनी पर्सनालिटी को वक्त के साथ साथ डेवलप कर सकते हैं या नहीं. सो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. सो जहां हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो टू मेन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हम सभी के सामने आता है. So the first one is introvert and the second one is extrovert. So सबसे पहले बात कर लेते हैं हम introverts की. So introverts are those people जो कि naturally quiet होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि they feel shy when they talking to the other people. Actually उनकी nature ऐसी होती है कि उन्हें कम बोलना पसंद होता है. वो mostly इस चीज़ को prefer करते हैं कि वो अपने आस पास society को observe करे, इर्द गिर्द का माहौल देखे, बजाय इसके कि वो खुद से ज़्यादा बोले. सो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया बनाते हैं, यानी कि एक लिमिटेड सा सर्कल, चंद एक दोस्त जिनके साथ वो खुल के बातचीत करते हैं, अपनी तमाम तरह बातें शेयर करते हैं, इधर उधर की बातें जो उनके दिल में होता है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो उनसे भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका उनके साथ एक कम्फर्ट लेवल बन जाता है. सो वो उनसे अपनी तमाम से बातें शेयर करते हैं. सो इस तरह के लोगों को कहा जाता है इंट्रोवर्ट्स. अच्छा, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं सो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी सीरियस होगी, या मे बी वो एक वीक पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने भी मैंने अपनी ज़िंदगी में लोग देखे हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स हैं, दे हैव अ रियली गुड पर्सनैलिटी, और जहाँ उन्हें बात करने का मौका मिलता है वो वहां बात कर भी लेते हैं. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ यू आर इंट्रोवर्ट, आपको बस बात करने का सलीका आना चाहिए. लेकिन ये भी है कि वो मोस्टली प्रेफर यही करते हैं कि उन्हें कम बात करनी पड़े, या फिर चार लोगों में वो ना ही बात करे तो अच्छा है. सो इस तरह के तमाम तर लोग जो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स को, लॉन्ग हैंगआउट्स को, और इसके अलावा इस तमाम तर चीज़ों को कि जहां उन्हें पब्लिकली ज़्यादा बोलना पड़े, सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट्स. अब से बात कर लेते हैं कुछ क्वालिटीज़ की. सो इंट्रोवर्ट्स थोड़े से शाये होते हैं, यानी कि

गुड थिंग अबाउट इंट्रोवर्ट्स ये कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज के वो बहुत कम बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे लोग अपने टाइम अपनी डोमेन को सेव करके रखते हैं, यानी कि ये लोग अपना टाइम कभी भी किसी भी फालतू चीज़ के ऊपर वेस्ट नहीं करते. सो ये होते हैं जी इंट्रोवर्ट्स और उनकी कुछ क्वालिटीज़. अब जरा हम बढ़ते हैं सेकेंड पर्सनैलिटी की टाइप की जानिब, जो कि है एक्स्ट्रोवर्ट. सो एक्स्ट्रोवर्ट टोटली ऑपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट्स से. एक्स्ट्रोवर्ट्स क्या करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, दे वांट टू इंटरेक्ट टू द अदर पीपल्स, उन्हें सोशल गैदरिंग्स पसंद होती है, ज़्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, हर किसी से बातचीत करते हैं, और मीट एंड ग्रीट उनका फेवरेट हॉबी होता है.

एक्सट्रोवर्ट का ये होता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक तरह से गुड ट्रेट भी है, और अगर हम देखें तो दूसरी तरह से एक बैड ट्रेट भी है, क्योंकि जहां आप बहुत सारे लोगों के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द अदर पीपल, यू वॉन्ट टू गिव योर ऑल एनर्जी टू ऑल द पीपल्स. सो इससे ये होता है कि लोग समझते हैं कि शायद आपका टाइम और डोमेन उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप तो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको उस तरह से सीरियस नहीं लेते, आपको उस तरह से वैल्यू नहीं करते एज कम्पेयर टू द इंट्रोवर्ट. लेकिन एक्सट्रोवर्ट की खासियत ये होती है कि उन्हें कभी भी हेजिटेशन नहीं होती. सो अगर उन्हें मौका मिले चार लोगों में बात करने का तो वह हमेशा दिल खोल के ऊंची आवाज से बात करते हैं. इसके अलावा डिबेट्स, मीटिंग्स, वर्क प्लेस, इस तरह की बहुत सारी जगहों में एक्सट्रोवर्ट्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है जब आप किसी भी वर्क प्लेस में जाते हैं. सो एक्सट्रोवर्ट्स को वहां पर कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जहां उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है वहीं उनको कुछ नुकसान भी होता है. सो ये थी हमारी दो डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. अच्छा, एक्सट्रोवर्ट्स का ये होता है कि वो सभी के साथ ओपन अप हो जाते हैं, सबसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं. लेकिन अब इंट्रोवर्ट्स का ये होता है कि वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो बातचीत नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन एक सिलेक्टिव सर्कल के साथ, सिलेक्टिव कैटेगरी के साथ. सो वेल लिसनर्स, आप इसे बताइएगा जितने भी हमारे लिसनर्स अभी अभी हमें ट्यून कर रहे हैं, कि क्या आप इंट्रोवर्ड हैं या फिर आप एक्सट्रोवर्ड हैं, और आपके ख्याल में क्या इंट्रोवर्ड्स बेटर होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ड्स. सो किस तरह से आप जवाब देंगे हमारे इस सवाल का, उसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ 0115710091. सो इस नंबर के थ्रू आप मुझे जल्दी से जाकर जवाब दीजिए, और जितनी देर में आप हमें जवाब देते हैं उतनी देर में प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक. सो आइए मिलकर सुनिए ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के 5 इम्पोर्टेंट डायमेंशंस की.

सो वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय किया होगा। सो अब मैं आपसे शेयर करूंगी पर्सनालिटी के 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। सो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क यूज किया गया है, सो जिसे हम कहते हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो इन 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की मदद से आप किसी की भी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे पर्सनालिटी को 5 ब्रॉड डायमेंशन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए इट्स रियली इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन की, विच इज कॉल्ड ओपननेस। इसका रिलेशन क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और न्यू आइडियाज के लिए ओपननेस से है। ऐसे लोग न्यू एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें अच्छा लगता है कुछ न्यू, कुछ यूनिक, कुछ इन्फॉर्मेटिव, साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव। सो इस तरह की तमाम तरह कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले लोग आते हैं ओपननेस में। अब बात करते हैं सेकंड डायमेंशन की, विच इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर से रिलेट करता है। सो ऐसे लोग प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहद सीरियसली लेते हैं, कमिटमेंट के लिए अच्छे होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वेल लिसनर्स, अगर आपका भी ताल्लुक है ऐसे लोगों से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट में बेहद अच्छे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करना अच्छा लगता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिलोंग करते हैं कॉन्शियसनेस से। अब बात करते हैं थर्ड पर्सनालिटी ट्रेट की, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रावर्जन। अच्छा, एक्स्ट्रावर्जन ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल इंगेजमेंट, एनर्जी और आउटगोइंग बिहेवियर बेहद पसंद होता है। सो इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग मोस्टली एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मीट एंड ग्रीट, सोशल गैदरिंग्स, पब्लिकली लोगों से मिलना, बातचीत करना, डिबेट्स करना और इसके अलावा प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट, इस तरह के बहुत सारे काम। अब हम बात करते हैं फोर्थ पर्सनालिटी डायमेंशन की, विच इज कॉल्ड एग्रीएबलनेस। सो इसका रिलेशन कोऑपरेशन से, काइंडनेस से, एम्पैथी से और इंटरपर्सनल हारमोनी से होता है। सो इस तरह के लोग काफी हद तक काइंड होते हैं, वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अकेले ही आगे काम ना करें बल्कि अपने साथ एक पूरी टीम को लेकर चलें। अब आ जाता है हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट पर्सनालिटी डायमेंशन, विच इज कॉल्ड न्यूट्रोसिज्म। सो ये एक इमोशनल सेंसिटिविटी और नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी से रिलेट करती हुई डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ट्रेड्स को गुड पर्सन वर्सेस बैड पर्सन की कैटेगरी नहीं समझना चाहिए। हर ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट होता है और किसी इंसान को सिर्फ एक लेबल से कम्प्लीटली हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो ह्यूमन पर्सनैलिटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन 5 वर्ड्स।

सो अब जरा बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है। जहां आज हमने पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया, तो अब जरा मैं आपसे कुछ ऐसे ट्रेड शेयर करती हूँ जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आया इस इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है या वी। सो एक फ्रेज बहुत कॉमनली सुना जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी बेहद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की क्या लाउड होना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है? क्या हर आर्ग्यूमेंट मैं अपनी बात को मनवाना, दूसरे के सामने खुद को डिफेंड करना, क्या ये तमाम से चीज़ें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आती हैं? क्या इंटीमेटिंग होना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है? सो इसका जवाब है बिल्कुल ना। मेरे अकॉर्डिंग हेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब है आप अपनी वैल्यूज़ को समझें, आप रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करें, आप दूसरों के ओपिनियन सुन सकते हैं, आप मिस्टेक्स होने पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म से भी सीख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना कभी भी ना ज़रूरी समझें। सो मेरे नज़दीक ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो इन तमाम तरह चीज़ों का, इन तमाम तरह बातों का ख्याल रखते हैं, वही होते हैं अ गुड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर्सन्स। सो अक्सर लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस मीन्स लाउड, बट रियल कॉन्फिडेंस यूजली लाउड नहीं होता, कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत क्वाइटली अपीयर भी होता है। सो एक सिंपल से एग्जाम्पल आपसे शेयर करती हूँ, आई डिसएग्री बट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन भी स्ट्रांगली पर्सनैलिटी का साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट करें, आप दूसरे के सामने खुद को मनवाने की कोशिश करें। सो मेरे नज़दीक अगर आप अपनी कोर वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का एहसास करते हैं, आप जहाँ पर आप रॉन्ग हैं आप खुद को रॉन्ग समझते हैं, और जहाँ आपको लगता है कि सामने वाला गलत है आप उसे भी रियलाइज़ करवाते हैं, देन इट्स अ गुड पर्सनैलिटी एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा, मेरी नज़र में वीक पर्सनैलिटी लोग वो होते हैं जो कि फ़ौरन से पैनिक कर जाते हैं, जो सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इन रियल लाइफ डेली बेसिस पर इंसान को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सम डेज चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं एंड सम डेज चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। सो इट्स वे बेटर कि आप इस कदर अपनी पर्सनैलिटी में ठहराव पैदा करें कि आप हर तरह की सिचुएशन का सामना कर सकें। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।

बैक एक बार फिर से आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा आप सभी की खिदमत में हाजिर है और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग और आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कमर्शियल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी के 5 इम्पोर्टेंट डायमेंशंस की, साथ ही साथ कि किस तरह की पर्सनालिटी को स्ट्रांग पर्सनालिटी कहा जाता है और किस तरह की पर्सनालिटी को अ वीक पर्सनालिटी कहा जाता है। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि साथ ही हमारे आज का जो ये टॉपिक था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। सो आज हमने पर्सनालिटी को सिर्फ लुक्स या कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक ऐसी थॉट से देखा जहां हमने देखा बिहेवियर को, कम्युनिकेशन को, उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स को और पर्सनल ग्रोथ को। सो वेल लिसनर्स, एंड पे एक थॉट आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं। पीपल में नोटिस योर अपीयरेंस फर्स्ट बट ओवर टाइम दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। सो आपने इस बात का भरपूर ख्याल रखना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ इम्प्रेसिव बनने की कोशिश ना करें बल्कि उसे आप जेन्युइन बनाएं, काइंडनेस रखें, बाउंड्रीज रखें, कॉन्फिडेंस रखें, ह्यूमैनिटी रखें और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने आप को समझने की कोशिश करें। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म फॉर एवरीवन एल्स लाइफ। आपको पता होगा कि आप कौन हैं, आपके क्या कोर वैल्यूज़ हैं, आप किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। सो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक हुआ जाता है कंप्लीट। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। वेल आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, किसी भी किस्म का हो कोई सवाल, सो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। साथ ही साथ आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि आप डेली बेसिस पर जहां बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में कौन सी पर्सनालिटी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी कंसीडर की जाती है और कौन सी पर्सनालिटी एक वीक पर्सनालिटी कंसीडर की जाती है। सो इसके साथ ही अब हम दीवा डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की जानिब। सो हमारा आज का अगला सेगमेंट है द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम बात करते हैं नए खानों की, नित नई रेसिपीज की और चटपटे जायकों की। सो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मजेदार सी जबरदस्त सी रेसिपी जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी अब से थोड़ी देर में। सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि आज हम कौन सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। आपको मैं दो ऑप्शन देती हूँ, फर्स्ट इज अ पाकिस्तानी कुजीन एंड द सेकंड इज इटालियन कुजीन। लेट्स सी कि हमारे लिसनर्स का आईक्यू कितना अच्छा है और आप क्या ठीक तरीके से गेस कर पाते हैं या नहीं। सो वेल लिसनर, जितनी देर में आप गेस करते हैं उतनी देर में हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार फिर मैं आपसे शेयर करूंगी आज की द स्पाइस किचन की रेसिपी।

चलो इस प्रोग्राम में वक्त हो चुका है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर करने का। सो वेल लिसनर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अ पाकिस्तानी कुजीन एशियन रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता कड़ी। आई नो आप सब ने इस रेसिपी को ट्राई किया होगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुरानी है। सो हो सकता है आपकी अम्मियों ने या फिर आपकी फैमिली की जितनी भी ओल्ड फीमेल्स हैं उन्होंने इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो। लेकिन आज एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हम इस रेसिपी को बनाएंगे लेकिन एक डिफरेंट अलग स्टाइल से। सो इस सॉफ्ट जूसी चिकन कोफ्ते क्रीमी और फ्लेवरफुल ग्रेवी, इन तमाम तर चीज़ों को एक साथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको गौर से सुनने होंगे तमाम तर इंग्रेडिएंट्स। सो आइए लिसनर्स, मैं आप सभी के साथ इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। जल्दी से आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी, पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट। सो जस्ट इन केस के आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए, इसके लिए आपको जल्दी से रेडी करनी होगी अपनी नोटबुक। सो सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसमें चिकन 500 ग्राम्स, प्याज एक स्मॉल अदद जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ हो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज 2 फाइनली चॉप्ड, फ्रेश कोरिएंडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, या फिर आप इसे हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स 3 टेबलस्पून। अंडे 1-2 अदद, साथ ही साथ कुकिंग ऑयल कोफ्ते को फ्राई करने के लिए। सो वेल लिसनर्स, ये वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे ये मज़ेदार से चिकन कोफ्ते। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून, प्याज 1 मीडियम फाइनली चॉप्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, टमाटर 2-3 अदद जो कि आपने बिल्कुल ब्लेंड कर लेने हैं, योगर्ट 1.5 कप, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, पानी शामिल होगा इस रेसिपी में 1-2 कप, फ्रेश कोरिएंडर हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन चिलीज भी हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे इस रेसिपी को। सो वो तो मैंने आपसे शेयर कर दिए। सो अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट अगर मिस हो गया हो, या फिर ऐसा कभी कभार होता है कि जल्दी जल्दी में इंसान को समझ नहीं आती, तो उस सूरत में आप 0115710971 आप इस नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। वेल, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी क्यूरीज को दूर किया जाए और आपको बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया जाए। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब के किस तरह से हम झटपट इस रेसिपी को रेडी करेंगे। सो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे 500 ग्राम चिकन, यानी कि चिकन कीमा। अब इस पे फाइनली चॉप्ड प्याज, साथ ही साथ शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की, रेड चिली पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। इस मिक्सचर में 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और 1 अदद अंडा भी शामिल होगा। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स इवेंचुअली कंबाइन हो जाएं। मिक्सचर को आपने 10 से लेकर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। इससे ये होगा कि आपके जो कोफ्ते हैं वो शेप करने में इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फौरन से उनको शेप करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि वो ब्रेक्स होना शुरू हो जाएं। सो आप इसे रख देना है 10 से लेकर 15 मिनट तक। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, यानी कि कोफ्ते शेप करने की। अब आपने हाथों में हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है, चिकन मिक्सचर को स्मॉल पोर्शंस पे लेना है और उन्हें राउंड शेप में रोल कर लेना है। आप कोफ्ते अपनी मर्जी के साइज के भी बना सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर के मीडियम साइज कोफ्ते ग्रेवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और टेस्ट पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं यहाँ बनाऊंगी मीडियम साइज कोफ्ते।
अब बारी आ जाती है हमारे स्टेप नंबर 3 की, जहां हम इन कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। सो अब फ्राइंग पैन में हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे, कोफ्तों को मीडियम हीट पर जेंटली फ्राई कर लेंगे। हमें उन्हें कम्प्लीटली डार्क नहीं करना, बाहर से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर और एक फर्म टेक्सचर आ जाए, इतनी देर तक बस आपने उन्हें फ्राई करना है। जब आपके कोफ्ते लाइट गोल्डन से हो जाएं, उन्हें पैन से निकाल कर साइड पर रख दें। अब बारी आती है कि हमारे कोफ्ते तो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं, सो अब हम तैयार कर लेंगे ग्रेवी। अब एक दूसरे पैन में हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें स्लाइस्ड अनियन शामिल करेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे, साथ ही साथ इन्हें कुछ सेकंड्स तक भून लेंगे। फिर ब्लेंडेड टमाटो शामिल करेंगे, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और साथ ही साथ नमक। मसाले को मीडियम हीट पर अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक आपका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। सो अब जब ये पॉइंट आ जाए, आपने क्या करना है, हीट को कर देना है कम और योगर्ट को थोड़ा थोड़ा करके बीच में शामिल करना है। योगर्ट ऐड करते वक्त आपने कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, ताकि ग्रेवी में बिल्कुल भी फिटकड़ी ना बने। अब मसालों को दोबारा से अच्छी तरह से भूने, जब ग्रेवी स्मूथ हो जाए और ऑयल साइड पे नजर आने लगे, तो समझ जाएं कि आपका मसाला प्रॉपरली कुक हो चुका है। सो वेल लिसनर्स, एट दिस पॉइंट हम बढ़ेंगे अपने लास्ट एंड फाइनल स्टेप की जानिब, जहां हम ग्रेवी में अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप से लेके 2 कप वाटर शामिल करेंगे। ग्रेवी को बॉयल होने देंगे। अब केयरफुली आप फ्राइड चिकन कोफ्ते ग्रेवी में शामिल करेंगे। पानी को कवर करें और मीडियम लो हीट पर अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 15 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लें। इस वक्त कोफ्ते ग्रेवी के फ्लेवर ऑब्जर्व कर लेंगे और अंदर से भी प्रॉपरली कुक हो जाएंगे। आखिर में 1.5 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल करें, फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली से इसे अच्छी तरह से गार्निश कर दें। एंड टडा, आपकी मज़ेदार सी डिलिशियस चिकन कोफ्ता बिल्कुल हो गए हैं तैयार। इन्हें आप गरम नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप डिनर को थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो साइड में आप फ्रेश सैलेड और रायता भी सर्व कर सकते हैं, जो कि दिखने में भी प्रेजेंटेबल दिखेगा एंड अगेन टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा होगा। तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, हमारी सॉफ्ट जूसी और फ्लेवरफुल चिकन कोफ्ता करी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। याद रखिएगा, कुकिंग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का नाम नहीं, बल्कि थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारे लव को शामिल करने का नाम है। सो जहां आप मन लगा के दिल से खाना पकाएंगे, आपका खाना ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा, टेस्ट भी इन्हेंस होगा और आपको बेहद अच्छा लगेगा। वेल लिसनर्स, आपके साथ जब मैं ये रेसिपी शेयर कर रही थी, तो मुझे इतना दिल कर रहा था कि मैं फ़ौरन से इसको खा लूँ, क्योंकि अभी तो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो हम इसे नहीं खा सकते, लेकिन आप इसे ज़रूर खा सकते हैं, लंच में बनाकर, डिनर में बनाकर या फिर फैमिली किसी गैदरिंग में। वेल वैसे मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप आज इसे डिनर में ट्राई करें, क्योंकि डिनर में सब घर वाले एक साथ होते हैं। सो इट्स अ रियली ग्रेट चांस कि आप साथ में मिल बैठ कर एक अच्छी सी डिलिशियस सी रेसिपी ट्राई करें। वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का स्पाइस किचन। वेल अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की कोई फूड सीरीज स्टार्ट करें, सो उसके लिए भी यू कैन टेक्स्ट मी राइट नाउ। किस तरह से आप कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। 01157100971। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे हर तरह का सवाल कर सकते हैं, रेसिपी से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड और आज के दिन के से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बताते चलती हूँ कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं, बल्कि आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड। कौन सा है प्रोग्राम आने वाला, आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है शामिल होने वाला।

साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो इस एप्लीकेशन से आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। आप कहीं पर भी जाकर हमें ट्यून कर सकते हैं। सो बस आपने लगाने हैं हेडफोन्स और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना है। सो दे लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सी मालूमात के साथ। सो तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दुआओं में याद रखना है और सबसे बढ़कर आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि हर आने वाला नया दिन आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे चैलेंजेस। सो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना है। सो हर दिन जब आप लिटिल मेहनत करेंगे तभी जाकर एक ऐसा दिन आएगा जहां आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। सो इसे खूबसूरत सी मोटिवेशनल सी बात के साथ आज के डीवा डायलॉग का वक्त हुआ जाता है खत्म। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और इसके अलावा अगर मुझसे आपने कोई भी सवाल करना है किसी भी किस्म का वो भी आप कर सकते हैं।

सुबह लिसनर्स, जैसे कि साथ ही प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और जाते जाते आप सभी के लिए मैं एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले कर देती हूँ। आप इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

पे तो सुन रहे सो अपने तो अपने होते हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं। तो मैं तो गल करना चाहूँगा कि मैं गाना सुन के ना मेरा भी जरा थोड़ा जहा ना दिमाग दे जो ना दिल का दिमाग थोड़ा जहा घूम गया है। तो अज मैं तुम्हें एक हकीकत दसा, तुम अपने बारे दसा कि मैं अगर अपने खूनी रिश्ते के बारे गल कर रहे हो तो मैं तुम्हें दसा कि सब तो करीब रिश्ता माँ प्यो का होंगे। तो मावं नाल तो पुत्रां दी उंझ ही बड़ी होंगी है, यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होंगी है। लेकिन अगर गल की जाए कि वाल साहब नाल अगर तुहाडे बापू नाल तुहाडी गल, तो मेरी अपने बापू नाल इस तरह का सीन है कि असी एक कोई मतलब कि असी कोई इवेंट का वेट करने हैं कि जिथे मतलब मैं खास तौर पर कि मतलब कि मैं उन्होंने मिलागा या उन्होंने गले लावगा। लाइक उंझ साडा मतलब बहुत ही जिन्होंने कह लो कि मैं बहुत उन्होंने रिस्पैक्ट करना वा, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक झाका जहा, लाइक तुम कह सकते हो कि नहीं मैं ज़्यादा गल करता, मैं बस इन्हें सुनी दा होंदा जो कह दे बस ठीक है उही गल है बस उही कुछ है। हकीकत आई है कि माँ प्यो का जो बेसिकली सहारा होंदा बड़ा वड्डा सहारा होंदा है। उस तो बाद बाकी खूनी रिश्ते शुरू होंदे ने, उस तो बाद भैन भरा, फिर तुहाडे बाकी रिश्ते शुरू होंदे ने। बेसिक माँ प्यो ते भैन भरा यही रिश्ते ने, ते इन रिश्ते नूं कदी छड्डीदा नहीं होंदा। कोशिश करो अपनी जिंदगी दे विच के कदी कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो उन्होंने अवॉइड करो, खास तौर पर भैन भरावां दे विच। अजकल मैं देखे है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हुंदा वा कि अजकल के जो रिश्ते ने ना खास तौर पर भैन भरावां दे वो भी बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। यार भैन भरावां नूं अपने नाल एक दूए नाल रहना चाहिए, वो किसी रिश्ते नूं लैके कि किसी कोई ऐसी वजह लैके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। माँ बाप अपनी औलाद छड्ड देंदे ने कि जी औलाद ने अपना फैसला लै लिया, कि अपने औलाद ने फैसला ऐसा क्यों लिया। हाँ औलाद नूं चाहिए कि औलाद अपने माँ प्यो नूं कम अज़ कम इतना कोई मतलब कि समझाए या उन्होंने गाइड करे या उन्होंने मतलब कि कन्वेंस करे कि मेरा यह डिसीजन जोड़ा है वह डिसीजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पता की करते हैं गल फिर उधर ही आ जाती है ना कि औलाद बन जाती है ना थोड़ी जी चैड़ी हो जाती है, वो कहती है जी जो मैं मतलब अस वे असी भी वे हुए हैं असी भी अपने डिसीजन ले। लेकिन कुछ डिसीजन जोड़े होंगे ने हमेशा मिल बाट के या मतलब कि सलाह मशवरा करके ही करने होंगे ने, तो वह अपने माँ प्यो नाल ही करना होंगे। लोगों को यह समझ नहीं आती है कि माँ बाप नाल असल होता पता की है। तुहानू मैं मुद्दे की गल दसना वा क्योंकि गल्लां बहुत ज़्यादा ने दिमाग ही, अगर मैं तुहानू सारियां गल्लां करना शुरू करा तो वह गल्लां जरिए लंबी हो जाएगी। लेकिन खैर पॉइंट टू पॉइंट गल करांगे असी कि मोस्टली मैं चीज़ देखी है कि जदों खास तौर के उत्ते रिलेशन की गल हुंदी है, जदों लड़का या लड़की जवान हुंदा है तो वह फिर किसी रिलेशन के मतलब जा रहा हुंदा तो मतलब उस बारे में गल करता कि हाँ यार मैं इत्थे मैं यह बंदा पसंद है या मैं इहदे नाल शादी करांगा या यह मेरा ट्रू लव है व्हाट्स व्हाट्स एवर, लाइक तुसीं समझ रहे हो। असी उस डीपी जी जा रहे गल असी वो डैप्थ ही जावे असी वो गल करा कि देखो अगर इस तरह की कोई गल हो भी जाती है तो तुहाडा काम है कि तुसीं अपने माँ प्यो नूं कन्वेंस करो क्योंकि तुहाडे वालदैन जिहड़े तुहाडे माँ प्यो ने उन्हां तों बेहतर तुहाडे बारे च कोई भी नहीं सोच सकता। यह दुनिया के जितने बाकी रिश्ते ने जिहड़े मूँह बोले ने वो सब रिश्ते बेकार ने, क्यों क्योंकि तुहाडा बापू या तुहाडी वालदा ठीक है जिहड़ी तुहाडी माई होनी ने जिहड़े तुहाडे बापू है बापू तो चाहता है ना कि मेरा पुत्र मेरे तो अगे जाए। तुसी मैनू यह दसो तुहाडा कोई ऐसा रिश्ता दसो जिहड़ा कहिंदा होवे कि मेरे तो तू अगे जावे, कोई भी नहीं चाहता कि साढ़े तो अगे कोई लंघे। वह कहिंदा जिथे असी हाँ साढ़े तो थले ही होवे असी टॉप ते राज करिए।

हाँ जी, ते वेलकम बैक जी। जी हाँ, मैं तुहानू एक गल दस रहा सा कि मेरी उस टाइम जिहड़ी ट्यून सी वो काफ़ी डीप हो गई सी। लाइक मैं एक तुहाडे नाल बड़ा कनैक्ट हो गया सा, तुहाडे नाल गल कर रहा सा। मैनू नहीं पता कि तुसीं किस टाइम तक सुन रहे हो, किस टाइम तक नहीं। मैं तो बाद ही देखिया कि एडवरटाइजमेंट का टाइम चल रहा सी, बट मैं उस टाइम तुहाडे नाल गल पता की कर रहा सा। मैं उस टाइम तुहाडे नाल गल कर रहा सा कि जिहड़ा मेरा वीर भरा, जिहड़ा मेरा सुनने वाला है, जिथे भी बैठे है, जिहड़ी जगह तो सुन रहे हैं, ड्राइव करते सुन रहे हैं, घर बह के सुन रहे हैं, या किधरे काम करते सुन रहे हैं, तो मैं तुहानू एक गल कहांगा कि अपने रिश्तियां नू स्ट्रोंग करो। अगर तुहानू लगता है किसी भी किधरे भी तुहानू इस तरह लगता है कि अगर तुहाडा कोई रिलेशनस या तुहाडा कोई खूनी रिश्ता या तुहाडा कोई अजीज़ या किधरे तुहानू इस तरह लगता है कि तुसी किधरे दिल आजारी हो गई है या तुहानू लगता है कि वो रिश्ते खत्म हो गए ने, तो वह बहाल करने की कोशिश करो। बहाल मतलब कि उस चीज़ नू देखो, गल फिर उधर ही आ जाती है। मैं गल तुहाडे नाल पहला कर रहा सा कि मर्द एक पहाड़ मानता है, तो पहाड़ उस पहाड़ के उत्ते बारिश बिजली तो तूफान आते ही रहता है, तो वह जनाब उस तरह ही कायम दायम रहता है। तो अगर तुम इस चीज़ को लैके चलो कि तुम उस चीज़ को बड़े प्यार मुहब्बत नाल देखो, देखो अगर खुद हर्ट हो जाओ तो किसी ने पूरा कुंबा जोड़ के रखो, पूरा टब्बर जोड़ के रखो, तो क्या छोटी गल तो नहीं। तो अगर तुम्हें इस तरह लगता है कि तुहाडे जितने सुनने वाले, मतलब जितने तुहाडे लगता है तुहाडे अजीज़ो कारब, जिन्हें मेरे सुनने वाले अजीज़ो कारब ने, अगर तुहानू यह लगता है कि किधरे ना किधरे कोई ऐसी जगह कि तुहानू लगे कि यार तुहानू कन्फर्म नहीं है कि उस बंदे ने यह काम किया है कि नहीं किया, कि अगर तुसी छोड़े है किसी नू, तो कोशिश करो उस चीज़ नू सॉर्ट आउट करो, उस चीज़ नू एक बारी फिर देखो, तो खुद नू उहदी जगह ते रख के सोचो। कदी कदार इस तरह होंदा है कि इंसान अना दे विच अपने कई रिश्ते गवा देंदा है। अपनी अना नू साइड ते रखो, ये वक्त दा कोई पता नहीं, अज असीं इत्थे बैठे हाँ, साढ़े बाद कल कोई होर आ जाणगे, साडा नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्या कि तुसीं चाहुंदे हो कि तुसीं इत्थों जाओ तो तुसीं अपनी ए छाप छोड़ के जाओ कि साढ़े फलां सुनने वाले बड़े अना वाले सन, उन्होंने अपने रिश्ते खराब करते सन, या वो जिथे एक बारी रिश्ता छोड़ देंदे सन दोबारा हाथ नहीं फड़दे सन। लोग कहते हैं ना, मैं काटा मार देवा तो काटा वज जाता। कुछ रिश्ते होंगे ने जिन्हें काटे नहीं वजते, और रिश्ते जड़े होंगे ने संभाल के रखने होंगे ने। मेरी मनोगे तो मैं अगर तुम्हें एक बरादराना मशवरा दाँगा कि अपना टब्बर जोड़ो। अगर कोई वीर भरा भैन किसी गल की वजह तो तुहाडे तो अलग हो गए ने, तुसी उन्हें जोड़ो, उन्हें मिंत्र ला करो, उन्हें मनाओ, उन्हें जोड़ो, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी कद खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। मेरी तरफों जड़ी यह गल है इस गल के उत्ते, क्योंकि खामोशी एहसास है, क्योंकि संजीदगी ही बनती है इन गलों पर। कुछ बातें होती हैं जो संजीदा होकर कही जाती हैं और समझाई जाती हैं। बहरहाल सानू है जड़ा फ्लो है सानू सूट नहीं करता, तो असी क्योंकि सूट तो नहीं करता, क्योंकि असी हर टाइम सानू पता है लाला लाला लाई रखने, शुगल मेला लाई रखने, हंसी मजाक खेड कूद बस यही कुछ साड़ी जिंदगी चलता होंदा है। लेकिन अगर असी किधरे देखिए कि किधरे कोई साढ़े तो किसी दिलाजारी तो नहीं हो रही, कोई बंदा हर्ट तो नहीं हो रहा, जो बंदा हर्ट होवे उन्हें संभालो, क्योंकि हर्ट वही होंगे जो तुम अपना समझता है, वरना कोई तू कभी भी इस तरह नहीं लगेगा, तू इस तरह फील नहीं होएगा। क्योंकि देखो जिन्हें राह जाना नहीं वो कोई पेड़ नहीं गिणता, तो जिन्होंने जिस राह जाना होंगे वो पेड़ गिने जाते हैं। मेरे जितने जिंदगी के तजर्बे ने, मेरे अजीज़ ने, मतलब जो मेरे दोस्त ने, असी इकट्ठे जवान हो, असी कई चीज़ा देखिया, तो इंसान हमेशा अपने तजर्बियां तो सीखता है कि ख्याल है। अगर तुझे समझो तो इंसान हमेशा तजर्बियां तो सीखता है, तो मैं ये चीज़ा

0: it's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 011-599-8484 या 07-021-079-32।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

रियली इम्पोर्टेंट है, ये काम मुश्किल नहीं है। और दिलचस्प बात यह कि हमें खुशी भी इन्हीं चीज छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है कि एक अच्छी चाय, किसी दोस्त की अचानक कॉल, रास्ते में किसी का मुस्कुरा कर देख लेना, किसी का ना ख्याल रखना। जिंदगी बड़ी चीज़ों से कम और इन्हीं छोटी चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत बनती है। वैसे आज वेनसडे है, अक्टूबर 7, और तारीखें भी अजीब होती हैं। कैलेंडर पर एक छोटा सा नंबर, लेकिन हर तारीख अपने अंदर हज़ारों कहानियां छिपाए हुए है। आज से कई साल पहले इसी तारीख को इंसान ने चांद के उस हिस्से की पहली तस्वीर हासिल की थी जो ज़मीन से हमें नज़र नहीं आता था। ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान ने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि चांद का वो हिस्सा कैसा होगा जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है। फिर उसने कोशिश की, टेक्नोलॉजी बनाई, स्पेस क्राफ्ट भेजा, और आखिरकार वो तस्वीर दुनिया के सामने आ गई। मुझे इस वाकये में एक बहुत ही खूबसूरत बात लगती है, जो चीज़ नज़र नहीं आती ज़रूरी नहीं कि वो मौजूद ही ना हो। ये बात सिर्फ चांद के फार साइड के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी के लिए भी है। किसी इंसान को देखकर आप नहीं जान सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जो शख्स आपके सामने हंस रहा है ज़रूरी नहीं वो अंदर से भी खुश हो। जो बहुत खामोश है ज़रूरी नहीं कमज़ोर हो, और जो बहुत मसरूफ नज़र आ रहा है ज़रूरी नहीं मुतमईन हो। और जो शख्स बार बार कहता है कि मैं ठीक हूँ ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। इसलिए थोड़ा नरम लहजा रखें, आपको नहीं मालूम कि सामने वाला किस जंग से गुजर कर आपके सामने खड़ा है। और इंसानियत शायद यही है कि हमें हर इंसान की पूरी कहानी मालूम होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तब जाकर उसके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा सलूक पहले करें। कहानी बाद में मालूम हो तो ठीक है, ना मालूम हो तो भी ठीक है, क्योंकि काइंडनेस का फ़ायदा लेने के लिए सामने वाले का अपना होना ज़रूरी नहीं। वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी जमात में बात करता हो, इंसानियत की ज़बान समझने के लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक भूखे इंसान को खाना दे दें, उसे आपका मज़हब पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी ज़ख्मी को सहारा दे दें, उसे आपका पासपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी बूढ़े को सड़क पार करा दें, उसे आपका नाम मालूम होना ज़रूरी नहीं है। और शायद दुनिया को आज सबसे ज्यादा इसी सादगी की जरूरत है। हम हर चीज को डिबेट बना देते हैं, हर बात पर एक साइड दूसरी साइड, आर्ग्यूमेंट जवाब फिर काउंटर जवाब। कभी कभी भाई बस खामोश हो जाएं, हर जंग जीतना जरूरी नहीं, कुछ बहसें छोड़ देना भी अकल है। और कुछ लोगों को जवाब ना देना भी जवाब होता है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। वहां तो कभी कभी इंसान सिर्फ ये साबित करने में दिन घंटे लगा देता है कि उसे गुस्सा नहीं आता, और 3 घंटे बाद उसकी पूरी टाइमलाइन गुस्से से भरी होती है। ये भी हमारा अलमिया है, हमारे दौर का एक अजीब मसाला है। हम कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर सामने वाले का स्टेटस 5 मरतबा चेक करते हैं कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरे अकाउंट से देख रहे होते हैं कि उसने क्या पोस्ट किया। भाई अगर ब्लॉक किया तो ब्लॉक को ब्लॉक रह ही रहने दो। जिंदगी में कुछ चीजें छोड़ने के लिए होते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं। और यही उसूल पुरानी नाराजियों पर भी लगता है, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, गलती हो जाती है, बात बढ़ जाती है, कभी हमारी ज़बान से ऐसी बात निकल आती है जो नहीं निकलनी चाहिए, कभी सामने वाला गलती समझ लेता है, कभी हम गलत समझ लेते हैं। और अगर हर गलती के बाद रिश्ता ख़त्म कर दें तो आखिर में इंसान के पास लोग नहीं, सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। इसलिए जहां मुमकिन हो माफ़ कर दें, जहां मुमकिन हो बात करें, जहां बात करना नुकसानदेह हो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन दिल में जहर लेकर ना फिरें। क्योंकि जिस इंसान से आप नाराज़ हैं मुमकिन है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल आगे बढ़ चुका, और आप आज भी उस वाक़े को अपने अंदर उठाए फिर रहे हो। आपका सुकून इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। और दीन भी हमें यही सिखाता है कि दिलों को साफ रखा जाए, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, वालिदैन के साथ उसने सलूक को, पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, ज़रूरतमंद की मदद की जाए, इबादत इंसान को अल्लाह से जोड़ने, अच्छा अखलाक इंसान को इंसानों के करीब करता है। इसलिए अगर आज नमाज पढ़ी है तो खूबसूरत बात है, लेकिन नमाज के बाद घर जाकर लहजा भी खूबसूरत रखें। कुरान पढ़ा तो बहुत खूब, लेकिन इसके पैगाम को अपने रवैये में भी लाएं। किसी को नसीहत करने से पहले कभी अपने आप से पूछें कि मैं खुद कितना अमल कर रहा हूँ। ये सवाल इंसान को बहुत सी गैर जरूरी बातों से बचा लेता है। और वैसे भी दुनिया में सबसे आसान काम दूसरों को दुरुस्त करना है, मुश्किल काम खुद को दुरुस्त करना है। यहीं से असल मेहनत शुरू होती है, और शायद इसीलिए कामयाब इंसान वो नहीं है जो हर वक्त दूसरों की गलतियां गिनता रहे, बल्कि कामयाब इंसान वो है जो हर रोज रात को अपने आप से पूछे कि आज मैंने क्या अच्छा किया, किसका दिल दुखाया, कहाँ मुझे खामोश रहना चाहिए था, कहाँ मुझे माफी मांगनी चाहिए थी, और कल मैं आज से थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता हूँ। बस ये छोटी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इंसान को बदल लेती है। और आप में से जो लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं, खास तौर पर उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, फ़ोन हाथ में ना लें, बाद में देख लीजिएगा, मैसेजेस बाद में कर लीजिएगा। कॉल आपकी एक नोटिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं कि आप अपनी या किसी दूसरे की जान खतरे में डाल दें। रोड पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कम्युनिटी सफ़र करिए। किसी घर में किसी का इंतज़ार हो रहा है, किसी माँ का बेटा है रोड पर, किसी बच्चे का बाप है, किसी बहन का भाई है, किसी बीवी का शोहर है, किसी दोस्त का दोस्त है। इसलिए ड्राइविंग में ज़रा सा पेशेंस रखें, क्योंकि किसी की पूरी जिंदगी आपका सब्र बचा सकता है।

और पैशन की बात आई तो जिंदगी में ये भी समझना जरूरी कि हर चीज फौरन नहीं मिलती। हम इंस्टेंट कॉफी के आदि हो गए हैं कि इंस्टेंट रिप्लाईज, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नहीं है। बॉडी बनाने में वक्त लगता है, करियर बनाने में वक्त लगता है, रिश्ता मजबूत करने में वक्त लगता है, इल्म हासिल करने में वक्त लगता है, और इंसान बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए अगर आप आज किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद ये मसला नहीं कि आप नाकाम हैं, शायद आपको सिर्फ थोड़ा और वक्त चाहिए। जैसे एक बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, वैसे इंसान के ख्वाब भी वक्त मांगते हैं। बस शर्त यह है कि पानी देना बंद न करें, कोशिश बंद न करें, दुआ बंद न करें, अपने रब से ताल्लुक कम न करें। उसी उम्मीद के साथ आज के इस खूबसूरत दोपहर में हम आपके लिए एक खूबसूरत सा गाना पेश करने जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। रेडियो फजा 97.1 एफएम पर आफ्टरनून मिक्स चल रहा है, मैं हूं आपका मेजबान, और अभी सफर जारी है। खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, फिर वापस आकर इसी बात को वहीं से उठाएंगे जहां छोड़े।

और गाने के बाद जब हम वापस आते हैं तो वही बात ध्यान में रह जाती है कि जिंदगी में हर चीज फौरन नहीं मिलती, कभी कभी इंसान को इंतजार करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को वक्त देना पड़ता है, कुछ चीज़ों को वक्त देना पड़ता है, कुछ रिश्तों को, कुछ ख्वाबों को, और सबसे ज़्यादा खुद को। हम अपने आप से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। एक गलती हुई और हमने फैसला कर लिया कि बस हमसे नहीं होगा, एक इम्तिहान ख़राब हुआ तो लगता है कि हम नाकाम हैं, एक रिश्ता ख़त्म हुआ तो लगता है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई, और एक कारोबार में नुकसान हुआ तो लगता है कि किस्मत ही ख़राब है। लेकिन ज़िंदगी इतनी जल्दी फैसला नहीं करती जितनी जल्दी हम अपने बारे में फैसला कर लेते हैं। ज़रा अपने पिछले 5 साल याद करें, कितनी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में आपने सोचा था कि ये कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन आज आप उनसे गुजर चुके, शायद कुछ चीजें भूल भी चुके हैं। तो जो मसला आज बहुत बड़ा लग रहा है, जरूरी नहीं कि 5 साल भी उतना ही बड़ा हो। बस आज की परेशानी को कल की पूरी जिंदगी ना बनाएं। और एक बात, लोगों की राय को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील मत बनाएं। लोग तो तब भी बात करेंगे जब आप कुछ करेंगे, और तब भी बात करेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। आप कामयाब होंगे तो कहेंगे किस्मत थी, नाकाम होंगे तो कहेंगे मेहनत नहीं की। आप खामोश रहेंगे तो कहेंगे एटीट्यूड है, ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे बहुत बोलता है। तो फिर हर आवाज़ के पीछे चलने के बजाय कभी अपने दिल की आवाज़ भी सुन लीजिए। अलबत्ता दिल की आवाज़ सुनने का मतलब ये नहीं है कि अक्ल घर छोड़ आइए। दिल कहता है कि रात के 2 बजे बर्गर खाऊं, और अक्ल कहती है कि भाई सुबह जिम भी जाना है। दिल कहता है कि पूरा दिन फोन चलाऊं, अक्ल कहती है भाई जिंदगी भी कोई चीज़ है। दिल कहता है गुस्से में जवाब दे दूं, अक्ल कहती है कि मैसेज टाइप करके सेव कर दो, सेंड कल करना। और अक्सर सुबह उठकर वही मैसेज देखकर इंसान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेंड ही नहीं किया। ये भी एक कामयाबी है जनाब। जिंदगी में हर कामयाबी मॉडल नहीं होती, कभी कभी सिर्फ ये कि आपने गुस्से में खामोशी अख्तियार कर ली, कभी कभी आपकी कामयाबी किसी खिलाफ बोलने का मौका था और आप नहीं बोले, ये आपके लिए कामयाबी है। किसी कमज़ोर इंसान के लिए आपने आसानी कर दी, ये भी कामयाबी है। वालिदैन के पास बैठ के, ये भी कामयाबी। हमने कामयाबी को बहुत महंगी चीज़ बना दिया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा, बड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन कभी कभी ये कामयाबी भी है कि रात को सर तकिए पर रखे और दिल के कि आज मैंने किसी का हक नहीं मारा, आज मैंने किसी को जानबूझ कर तकलीफ नहीं दी, आज मैंने अपने रब को याद किया, आज मैंने अपने घर वालों के लिए वक्त निकाला और फिर सुकून से सो जाएं। ये सुकून बहुत कीमती है। अगर आप इस वक्त काम कर रहे हैं तो एक बात आपके लिए भी है, काम सिर्फ पैसा कमाने का नाम है, काम के अंदर इज्जत भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है और दूसरों के लिए फायदा भी। चाहे आप ऑफिस में बैठे हों, शॉप पर हों, ड्राइविंग कर रहे हों, या कंस्ट्रक्शन साइट पर हों, स्कूल में हों, रेस्टोरेंट में हों, या फिर घर से अपना काम कर रहे हों, फ्रीलांसर हों, अपने काम को छोटा मत समझें। दुनिया का हर जायज़ और मेहनत वाला काम इज्जत के काबिल है। एक शख्स इमारत बनाता है, दूसरा उसे डिज़ाइन करता है, तीसरा उसकी सफाई करता है, चौथा वहाँ कमर काम करने वालों को खाना देता है। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है और यही कम्युनिटी है। अब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें एहसास हो या ना हो। आप सुबह जिस सड़क से गुजर रहे होते हैं किसी ने उसे बनाया है, आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं किसी ने उसे आग तक पहुँचाया है, आप जो खाना खाते हैं किसी फार्मर ने उगाया, और आप जो कपड़े पहनते हैं किसी ने उन्हें तैयार किया। और आज 7 अक्टूबर है और वर्ल्ड कॉटन डे भी, इसीलिए हमें एक छोटी सी याद दिहानी देता है कि जो चीज़ हमें रोज़मर्रा मामूली लगती है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी होती है। तो अगली बार जब कोई आप कोई छोटा सा काम करें, बस थैंक यू कह दीजिए, 2 लफ्ज़ हैं लेकिन इंसान को इंसान महसूस करा देते हैं, और शायद हमें आजकल इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे को इंसान महसूस कराने की बहुत जल्द लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ये अमीर है, वो गरीब है, ये पढ़े लिखे नहीं, वो ये हमारे, वो दूसरे हैं। लेकिन लेबल लगाने से पहले एक लम्हा रुक कर देखें तो शायद सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो बिल्कुल आपकी तरह खुश होना चाहता है, इज्जत चाहता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता है और रात को सुकून से सोना चाहता है। यही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत बहुत खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपका मेजबान हुज़ैफ़ा हैदर। अगर आप अभी भी हमारे साथ शामिल हुए तो जनाब सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आप चाहे अभी भी अपनी गाड़ी में बैठे हों, ऑफिस से निकले हैं, काम पर हैं, घर में हैं, या लंच के बाद आराम कर रहे हैं, या बस इत्तेफाक से रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते बदलते यहां आप पहुंचे हैं, तो वेलकम। यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। ये है आपका आफ्टरनून मिक्स और आज की इस खूबसूरत दोपहर में हम सिर्फ संजीदा बातें नहीं करेंगे। अब जरा मूड चेंज करते हैं, कुछ दिलचस्प बातें होंगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ यादें होंगी, कुछ ऐसी बातें जिन पर आप कहेंगे अरे हाँ ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है। और एक छोटी सी शर्त है, अगर आप हमारे साथ हैं तो सिर्फ सुनना नहीं है, कभी कभी दिल में जवाब भी देना है, क्योंकि रेडियो की असल खूबसूरती यही है ना। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप एड्रेस नोट कर लीजिए, www.radiofaza.co.uk। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए रेडियो फजा 97.1 FM प्ले स्टोर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फजा 97.1 FM को आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो की असल खूबसूरती यही है ना कि आवाज एक तरफ से आती है लेकिन एहसास दोनों तरफ से बनता है। अच्छा चलें, नए आने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल है, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या बस आराम से बैठ कर ये देख रहे हैं कि हुज़ैफ़ा आज कितनी देर बोलते हैं? और अगर आप आखिरी वाले हैं तो जनाब आज जरा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मूड भी है, बातें भी हैं और कुछ काफी कुछ अलग है। वैसे एक दिलचस्प बात तो हमारी जिंदगी में कुछ जुमले ऐसे हैं जो तकरीबन हर घर में बोले जाते हैं, मसलन बस 5 मिनट। ये 5 मिनट दुनिया का सबसे खतरनाक वक्त है, क्योंकि कोई कहता है कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप आधे घंटे बाद भी इंतजार कर, कोई कहता है बस 5 मिनट फोन चलाता हूं और फिर 2 घंटे बाद मोबाइल हाथ में होता है, कोई कहता है कि बस 5 मिनट आराम कर लेता हूं और आग खुलती है, मगरिब हो चुकती है। घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक और जुमला है कि मैंने कब कहा था। भाई आपने कहा था लेकिन अब सूत कहां से लाएं? फिर दूसरा शख्स कहता है अच्छा अगर आग कहा भी था तो क्या हुआ, और बस यही से डिस्कशन शुरू हो जाती है। रिप्लाई करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0115710971। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एक छोटी सी बात, एक लंबी बहस और आखिर में दोनों को याद ही नहीं रहता कि असल मसला क्या था। इसलिए कभी कभी जिंदगी में एक जुमला बहुत कम आता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हर बात को आखिरी अंजाम तक ले जाना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी सुकून जीतने के लिए बहस हारनी पड़ती है। और ये चीज़ खास तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत जरूरी है। आपने कोई कमेंट्स देखा, आपको गुस्सा आया, आपने रिप्लाई किया, सामने वाले ने जवाब दिया, आपने दोबारा जवाब दिया, फिर वो दोबारा, और अचानक आपको एहसास होता है कि मैं पिछले 40 मिनट से एक ऐसे शख्स से बहस कर रहा हूं जिसे मैं जानता भी नहीं, और सबसे दिलचस्प बात वो भी यही सोच रहा था। जनाब कभी कभी स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना भी विजडम है। हर नोटिफिकेशन आपके जवाब के मोहताज नहीं है, हर ओपिनियन आपके रिएक्शन का मुस्तहिक नहीं है, और हर इंसान को कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने सुकून के जिम्मेदार हैं। और सुकून की बात आई है तो एक खूबसूरत सवाल, आपको सुकून कहां मिलता है? किसी को मस्जिद में, किसी को कुरान की तिलावत में, किसी को फैमिली के साथ, किसी को सफर में, किसी को बारिश में, किसी को चाय के कप में, और किसी को बस खामोशी में। मेरे ख्याल में इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी जगह जरूर तलाश करनी चाहिए जहां वो दुनिया से चंद लम्हों के लिए कनेक्ट हो सके, क्योंकि हम हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन अंदर से डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। इसलिए कभी फोन साइड पर रखें, खिड़की खोलें, ताज़ा हवा लें, चाय बनाएं, किसी को अपने को कॉल करें और खुद से पूछें कि मैं वाकई कैसा हूं, ना कि लोग मुझे कैसे समझते हैं। और ये दोनों सवाल बहुत मुख्तलिफ हैं और शायद आज की दोपहर ये सवाल अपने आप से पूछने का वक्त है। लेकिन फिक्र न करें, मैं आज का पूरा प्रोग्राम सीरियस नहीं करने वाला, आगे चलकर कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिन पर आपको कहना पड़ेगा कि हुज़ैफ़ा भाई ये तो वाकई हमारे घर की कहानी है, तो कहीं मत जाइएगा। नए सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद, और जो शुरू से हमारे साथ हैं आपका तो खास शुक्रिया, आपने आज की दोपहर को हमारी आवाज के नाम किया। मैं हूं हुज़ैफ़ा हैदर और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM आफ्टरनून में। चलें इसी मूड को आगे लेकर चलते हैं, यहीं खुद शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग, सुनिएगा और सर धुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

अब जरा बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो बाहर बहुत मामूली लगती हैं लेकिन हकीकत में हमारी पूरी पर्सनैलिटी बना देती हैं। मसलन आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना आता है और आपके साथ बैठा हुआ शख्स पहले खाना शुरू नहीं करता बल्कि कहता है रुको रुको पहले पिक्चर, भाई खाना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कुछ लोग तो चाय भी तब तक नहीं पीते जब तक उसकी तस्वीर ना बन जाए, फिर कैप्शन लगता है पीस और फिर अंदर से बंदा सोच रहा है और तो ठीक है चाय तो ठंडी हो रही है पीस कहाँ गया। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी को दिलचस्प बनाती हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि हम बड़े होने के साथ साथ वो छोटी छोटी खुशियाँ भी भूल जाते हैं जो बचपन में खुद ब खुद मिल जाती थी। बचपन में बारिश हुई तो खुशी, गर्मियों की छुट्टी हुई तो खुशी, नई किताबें मिली तो खुशी, ईद के कपड़े मिले तो खुशी, दोस्त घर आया तो खुशी, और अब कभी सैलरी आने पर खुशी, फिर बिल्स देकर गम, फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो खुशी, फिर कोई इंटरनेट स्लो हुआ तो गुस्सा। ज़िंदगी भी ना हमने खुश होने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बना लिया। हम कहते हैं कि जब ये होगा तब खुश होंगे, जब प्रमोशन मिलेगी, जब गाड़ी आएगी, जब घर बनेगा, जब शादी होगी, जब बच्चे बड़े होंगे, फिर ज़िंदगी मुसलसल जब में गुजर जाती है। कभी कभी मौजूद लम्हों को भी थोड़ा सा इंजॉय कर लिया करें। ये जो अभी आप रेडियो फसा सुन रहे हैं ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा, यही दोपहर यही वक्त यही आवाज कल नहीं होगी, इसलिए जिंदगी को सिर्फ रिकॉर्ड करने के बजाय कभी कभी लाइव भी करने। अगर आपके पास अभी चाय है तो एक सिप लीजिए, और अगर चाय नहीं है तो कोई बात नहीं पानी पी लीजिए क्योंकि काफी है, क्योंकि हाइड्रेशन भी जरूरी है जनाब। वैसे पानी की बात निकली तो एक कन्फ्यूजन बनता है। अब में से कितने लोग हैं जो पूरा दिन सॉफ्ट टी कॉफी ड्रिंक्स और न जाने क्या क्या पी लेते हैं लेकिन पानी बाद में फिर सर दर्द हुआ तो कहते हैं पता नहीं क्या मसला है। भाई पानी पी लें, अपनी बॉडी के साथ भी कभी रिलेशनशिप अच्छा रखें, उसे आराम दें, उसे सही खाना दें, थोड़ा जैसे मूवमेंट दें, नींद पूरी करें, और यही बात जहनी सुकून पर भी लगा होती है। हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं, कभी नहीं कहना भी सीखें, और नहीं कहना बदतमीजी नहीं है। अगर आप थके हुए तो कह सकते हैं आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगर आज आप किसी काम के लिए तैयार नहीं है तो साफ बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपके लिए मुनासिब नहीं तो इनकार कर सकते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आज की खूबसूरत नशिस्त का वक्त भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। सच कहूँ तो जब आपके साथ बातों का सिलसिला चल रहा हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता, लगता है अभी तो प्रोग्राम शुरू किया था और देखते ही देखते वक्त यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हर खूबसूरत मुलाकात का इसी तरह मुलाकात का इख्तिताम भी होता है। आज हमने बहुत सी बातें की, कभी ज़िंदगी की, कभी रिश्तों की, कभी इंसानियत की, कभी दीन की, कभी हंसी मजाक की, और कभी कुछ ऐसी बातें भी हुई जिन पर शायद आपने दिल ही दिल में कहा होगा ये बात तो बिल्कुल मेरे साथ भी होती है। और अगर आज की पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जानी हो तो मैं यही कहूँगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानी करें, आसान बने। किसी को इज्जत दे सकते हैं तो इज्जत दें, किसी को माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ करें, किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, और अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम किसी का दिल ना तोड़ें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारे एक जुमले का दूसरे इंसान पर क्या असर होगा। मुमकिन है कि आपके लिए वो सिर्फ एक आम सी बात हो और सामने वाले के लिए पूरी उम्मीद बन जाए। और एक बात अपने लिए भी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, अपने वक्त का, अपने ज़हनी सुकून का, अपने रिश्तों का, और सबसे बढ़कर अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है, इसलिए हर दिन को सिर्फ गुजारे नहीं महसूस भी करें, अपने लोगों के साथ बैठें, हंसे, बात करें, माफ़ी मांगे, माफ़ करें, शुक्रिया अदा करें, और जब मौका मिले तो किसी के लिए अच्छाई ज़रूर छोड़ जाएं, क्योंकि आखिर में शायद लोग ये ना याद रखें कि आपने क्या पहना था, आपके पास क्या गाड़ी थी, आपके पास कितना पैसा था, लेकिन वो ये ज़रूर याद रख सकते हैं आपने उनके साथ कैसा सलूक किया था। और जिन लोगों ने आज पहली मरतबा आफ्टरनून मिक्स हमारे साथ सुना, आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार जब रेडियो फजा 97.1 FM आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे चलें उज़ैफ़ हैदर के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। और जो दोस्त शुरू से हमारे साथ मौजूद थे आपका तो खास शुक्रिया, आपने अपने दोपहर का एक हिस्सा हमारे नाम किया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नाटिकम और जहां भी रेडियो फजा 97.1 FM की आवाज़ पहुंच रही है, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन को सलाम कीजिए दीजिएगा और सलाम कीजिएगा भी, अपने बच्चों को गले लगाइएगा, अपने दोस्तों से रब्ता रखिएगा, और किसी नाराज़ी है तो कम से कम दिल में उसके लिए खैर ज़रूर चाहिए, क्या पता है छोटी सी नरमी किसी बड़े फैसले को कम कर दें।

अगर आपके पास सिर्फ एक अच्छा लफ्ज है तो वो कह दें हर मदद पैसों से नहीं होती, कभी किसी को सिर्फ रास्ता बताना भी मदद है, किसी की सीवी देखकर गलती बताना भी मदद है, किसी बच्चे को होमवर्क समझा देना भी मदद है, किसी बुजुर्ग को कुर्सी दे देना भी मदद है, और कभी कभी किसी ऐसे शख्स के साथ बैठ जाना जो खामोश है, ये बहुत बड़ी मदद होती है। ये तो अगर आपके आस पास कोई खामोश इंसान है उसे हमेशा ये मत कहें क्या हुआ क्यों परेशान हो, कभी बस साथ बैठ जाएं उसे बोलने दें, अगर वो ना बोलना चाहे तो खामोशी शेयर कर लें, हर दर्द को अल्फाज नहीं मिलते, शायद यही इंसानियत का सबसे खूबसूरत पहलू है कि हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करवाने की ज़रूरत नहीं, कभी सिर्फ महसूस करवाना भी काफ़ी है। और आज की इस दोपहर में जहाँ हमारी बातें आहिस्ता आहिस्ता आखिरी हिस्से में दाखिल हो रही हैं, मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्र करते हैं, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल हम कहाँ होंगे या अगले साल क्या होगा, कौन सी जॉब होगी, कितनी इनकम होगी, कौन साथ होगा, लेकिन कभी कभी फ्यूचर के बारे में इतना सोचते सोचते हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। जो हमारे पास से उसे जीना भी तो ज़रूरी है, आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, आज आप जिस उम्र में हैं ये उम्र दोबारा नहीं आएगी, आज जो लोग आपके साथ हैं मुमकिन है हमेशा ना हो, इसलिए मुस्तकबिल की प्लानिंग ज़रूर करें लेकिन आज की ज़िंदगी भी जिएं, अपने बच्चों के साथ बैठें, वालदैन के साथ चाय पिएं, दोस्त से बात करें, कभी अकेले वॉक पर निकलें, अपने रब को याद करें, कभी बगैर किसी खास वजह के मुस्कुरा दें, क्योंकि मुस्कुराहट के पीछे वजह होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी दिल कहे तो मुस्कुरा दें, अगर आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो भी रात को अपने आप से नफरत ना करें, कल दोबारा कोशिश करें, जिंदगी में सेकंड चांस बहुत अहम है, और अगर अल्लाह ने हमें सुबह उठने का मौका दिया तो ये खुद एक सेकंड चांस है, शायद जो कल नहीं कर सके आज कर सकें, शायद जिससे कल बात नहीं हो आज हो जाए, शायद कल जो फैसला नहीं कर सके आज कर लें, शायद कल जो दुआ नहीं मांगी आज मांग लें, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेवर एस्टिमेट अ न्यू डे, एक नया दिन सिर्फ कैलेंडर की नहीं बल्कि एक नया मौका होता है, एक नई डेट नहीं होता, और आज भी दिन बाकी है, ये दोपहर अभी ख़त्म नहीं हुई, शाम अभी आगे है, और शायद आज के बाकी चंद घंटों में कोई ऐसी अच्छी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही हो जिसका अभी भी आपको इल्म ना हो, तो उम्मीद रखें और उम्मीद के साथ कोशिश भी, दुआ भी और अच्छा रवैया भी। वैसे एक आखिरी सी बात जहन में आ रही है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, बहुत खूब, लेकिन दुनिया बदलने से पहले अपने कमरे की हालत देख लें, अपना फ़ोन स्क्रीन टाइम देख लें, अपनी नींद का शेड्यूल देख लें, अपनी नमाज, अपनी सेहत, अपना रवैया, अपनी ज़बान, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें तो शायद दुनिया बदलने की ज़रूरत ही कम पड़ जाए, क्योंकि मुआशरा हमसे बनता है, एक शख्स बेहतर होता है तो एक घर बेहतर होता है, एक घर बेहतर होता है तो एक मोहल्ला बेहतर होता है, एक मोहल्ला बेहतर होता है तो एक शहर बेहतर होता है, और शहर मिलकर दुनिया बनाते हैं, तो तब्दीली कहीं दूर से नहीं आएगी, तब्दीली हमसे शुरू होगी, और शायद यही बात आज की आफ्टरनून मिक्स का आखिरी पैगाम बन सकती है, लेकिन अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त और कुछ बातें बाकी हैं जो आपसे करनी है, तो जुड़े रहिए इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी आवाज के साथ, मैं हूं ज़ैफ़ हैदर, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM, यहां शामिल करेंगे एक खूबसूरत सा सॉन्ग, सुनिएगा और सर दुनिएगा, इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

जी हसना, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके लौट के वापस से सुमित के साथ, कि आप लोग मेरे साथ और मैं आपके साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.01 एफएम एंड डैब। फिलहाल सो प्रोग्राम कॉल ड्राइव टाइम, और इस ड्राइव टाइम में मेरा आपका साथ जो है बड़े खूबसूरत हमेशा की तरह आज भी है। छोटी सी प्यारी सी चिल्मन से कमर्शियल ब्रेक आपने एंजॉय की, और कमर्शियल ब्रेक उस पार जब लौट कर आए हैं तो उम्मीद है कि नए आने वाले मौजूद मेहमान जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको भी हम बताते चले जनाब, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हो, एप्लीकेशन के थ्रू हो, या फिर ट्रांसमिशन के थ्रू हो, चौथा ऑप्शन डैब भी है, डैब के थ्रू भी आप हमारा साथ दे सकते हैं अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो। तो मेरे जो नए नए दोस्त मेरे साथ शामिल हुए हैं उनके लिए खूबसूरत सा गहरा हुआ मैशअप एंजॉय कर रही है आप, और आपके लिए शामिल कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स आप भी एंजॉय करेंगे। इसके उस पार करते हैं आपसे मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

होता है मेरा ऐसा सुकून जिस पर तकदीर भी फिदा हो, मरता हूँ खामोशी में, ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा।

और जयवन सेकंड वेलकम बैक तलहंजम की आवाज़ खूबसूरत सी आपने समाज फरमाई अगेन से वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने फजा 97.01 एफएम को ट्यून कर रखा है और अपने मेज़बान उस्मान खान को सुन रहे हैं। समीन शाम का ये वक्त भी कितना अजीब होता है ना, दिन का शोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, लोग अपने कामों से वापस आ रहे होते हैं, किसी का सफ़र घर की तरफ जारी होता है, कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई चाय के कप के साथ बैठा है और कोई ऐसा भी है जो पूरा दिन लोगों के दरमियान रहने के बाद अब खामोशी चाहता है। और ड्राइव टाइम इसीलिए शायद एक रेडियो शो ही नहीं बल्कि ये वो वक्त है जब हम रास्ते में होते हुए भी कुछ लम्हे अपने लिए निकालते हैं। उम्मीद है कि आपने भी रेडियो को ट्यून किया सिर्फ इस वजह से कि आप भी अपने कुछ लम्हात अकेले रहना चाहते हैं। सो आज अगले कुछ वक्त के लिए अपने कामों का बोझ थोड़ा सा साइड पे रखिएगा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाइए और मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए, क्योंकि जनाब आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो बज़ाहिर बहुत मामूली सी लगती हैं, छोटी सी लगती हैं, लेकिन इंसान की पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल सकती हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या होती है, इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के लिए ना लाखों रुपए चाहिए, ना कोई ख़ास ताल्लुक चाहिए और ना ही कोई बड़ी सिफारिश, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। बल समय कभी आपने गौर किया है कि किसी इंसान के पूरे दिन को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक जुमला ही काफ़ी होता है, जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, फिक्र ना करें मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, अगर आप कर सकते हैं तो यकीनन बाकी लोग भी कर सकते हैं। बल्कि छोटी छोटी बातें हैं, ये जुमले हैं, शायद बोलने वाले के लिए सिर्फ 5-6 सेकेंड लगते होंगे लेकिन सुनने वाले के लिए शायद पूरे दिन की ताकत बन जाए। हम अक्सर समझते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सा वक्त होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए दूसरे को पास ना हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी किसी को थोड़ा सा वक्त देना भी उसकी मदद के लिए काफ़ी होता है, किसी की बात खामोशी से सुन लेना भी उसकी एक मदद ही होता है, किसी की हौसला अफजाई कर देना भी उसकी मदद होता है, और कभी कभी तो सिर्फ किसी को ये एहसास दिला देना कि तुम अकेले नहीं हो बहुत बड़ी नेकी होती है। तो आज एक छोटा सा काम करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में किसी एक ऐसे शख्स का नाम सोचिए जिससे काफ़ी अरसे से आपकी कोई बात नहीं हुई, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ख़ास दोस्त ही हो आपका, कोई पुराना क्लास फेलो, कोई कज़न, कोई उस्ताद, कोई एक पुराना कोलीग या कोई ऐसा शख्स जिसे ज़िंदगी की मसरूफियात ने फासले पैदा कर दिए हैं, बस एक मैसेज छोड़ दीजिए उसे और उसमें यही लिखिएगा कि काफ़ी दिन हो गए बस आज आपकी याद आई तो सोचा खैरियत पूछ लूँ। मुमकिन है कि जवाब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, ओके हूँ, फाइन हूँ आए, लेकिन मुमकिन है कि दूसरी तरफ बैठा इंसान उस वक्त यही सोच रहा हो कि अच्छा चलो किसी को तो मेरी याद आई। और कभी कभी आपको पता है ये छोटी सी बात ही बहुत बड़ी बात होती है। बल्कि ज़रा ऐसा करते हैं कि सोचिए, चलिए एक दिलचस्प चीज़ करते हैं ना, कि आप इस वक्त जहाँ भी बैठे हैं अपने आसपास देखिए और 3 चीज़ें तलाश करें, कोई भी रैंडम कोई भी 3 चीज़ें। एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उस जगह पर, एक ऐसी चीज़ जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप समझते हैं कि आपका काम मुश्किल हो जाएगा। आप ज़रा रैंडमली आगे पीछे देखिए, कोई ऐसी 3 चीज़ें नज़र आई, एक चीज़ जो आपको पसंद है, एक चीज़ जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं और एक चीज़ जिसके बगैर आपका हर काम मुश्किल हो, मिली? अब ज़रा सोचिए इन 3 में से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ साल पहले आपकी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं थी। ये सवाल थोड़ा अजीब सा है लेकिन इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। हम जिन चीज़ों के बगैर आज खुद को

पूरा समझते हैं ना, कभी कभी हम उन्हीं के बगैर बिल्कुल आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं था, ज़िंदगी फिर भी चल रही थी। इंटरनेट नहीं था, लोग रबते में थे। ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं थी, लेकिन बाज़ार आबाद थे। ये सोशल मीडिया ये भी तो नहीं था, दोस्त तो फिर भी दोस्त थे। इसका मतलब ये नहीं कि नई चीज़ें बुरी हैं, बल्कि असल बात ही ये है कि चीज़ें हमारी सहूलत के लिए हैं, हमारी ज़िंदगी की मालिक बनने के लिए नहीं होती। कभी कभी फ़ोन मेज़ पर रख के इंसान सिर्फ 10 मिनट किसी इंसान से बात करके देखे, आपको महसूस होगा कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। आपको पता है, हम सब ज़िंदगी में ना कभी ना कभी ऐसे मराहिल से ज़रूर गुजरते हैं जहां हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे। आज के दौर में तो ख़ास तौर पे हर इंसान ये ऐसा सोचता है कि काश यार कोई मुझे भी समझे। लेकिन हर बात समझाने के काबिल भी तो नहीं होती। कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि कभी कभी इंसान बात नहीं करता, खामोश रहता है। लोग फौरन फैसला कर लेते हैं, ये नाराज़ है, ये गरूर में आ चुका है, इसका रवैया बदल चुका है। लेकिन हकीकत हो सकता है कि वो सिर्फ थका हुआ हो सकता है कि वो किसी ऐसे मसले से गुजर रहा हो जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता, या ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर ही अंदर किसी जंग में मसरूफ़ हो। इसलिए हर खामोश शख्स को मगरूर समझना ज़रूरी नहीं होता। समय कभी कभी खामोशी के पीछे बहुत शोर होता है, और शायद हमें लोगों को समझने से पहले उनके बारे में फ़ैसला करना बंद करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो पहले तो बहुत बोलता था, खुश रहता था, हंसता मुस्कुराता था, लेकिन आजकल खामोश है, आपसे थोड़ा सा कट गया है, हट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मगरूर हो चुका है, उसके पास आपको देने के लिए वक्त नहीं है। सोन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो अपने ही अंदर कोई जंग लड़ रहा हो, पता नहीं कितने मसाइल से खुद अकेला लड़ रहा हो। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। एक शख्स था, रोज़ाना एक ही रास्ते से दफ्तर जाता था। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स उसे एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठा हुआ मिलता था, वो रोज़ उसे देखता। एक दिन उस शख्स ने दुकान पर रुककर उसे पूछ लिया कि बाबा जी, आप रोज़ यहाँ इतनी देर तक बैठे रहते हैं, बोर नहीं होते? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं बेटा, मैं लोगों को देखता हूँ। जिस पर उस शख्स ने पूछा कि लोगों को देखकर क्या मिलता है आपको? सुन, बाबा जी ने जवाब दिया कि मुझे ये याद रहता है कि हर इंसान अपनी जगह एक कहानी है। वो शख्स हंस कर चला गया था। कुछ दिन के बाद वो परेशान था, दफ्तर में मसला, घर में मसला, जहन में हजार किस्म के सवाल थे। फिर वो शख्स उसी दुकान के सामने जाके रुक गया, और जब बूढ़े ने उसे देखा तो सिर्फ इतना कहा, आज तुम्हारी चाल बता रही है, तुम्हारे जहन में बहुत कुछ चल रहा है। सो वो शख्स ये बात सुनने के बाद खामोश हो गया। फिर पहली मर्तबा उसने किसी अजनबी के सामने अपनी परेशानी बयान की। बूढ़े ने कोई बहुत बड़ा मशवरा नहीं दिया, बस इतना सा कहा, बेटा मुश्किल वक्त हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता, इंसान रहता है और इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। इस कहानी, छोटी सी कहानी, दो बातें हैं। इन बातों को सुनने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जहन में आती है ना, कि कभी कभी हमें हल नहीं चाहिए होता, बस कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमें बस सुन ले। वर्ल्ड प्रोग्राम में एक मशहूर ब्रेक से पहले खूबसूरत सी आवाज़ शामिल कर रहा हूँ, और ये आवाज़ जो है उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी, हनी सिंह, और उम्मीद है कि आपको इसकी आवाज़ पसंद आएगी। लौट कर आते हैं इसके उस पार, रहिएगा मेरे साथ, मुझे कहते हैं उस्मान खान।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर
6: इट्स कमर्शियल टाइम.
7: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
8: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
9: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
8: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
9: मुगल बिल्डर्स?
8: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
8: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
9: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
8: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें.

ऑलराइट फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक एक छोटी सी प्यारी सी म्यूजिक मोशन पे। आपका मैं उस्मान, उस्मान खान अगेन आपके साथ। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ हैं। नए आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है ड्राइव टाइम, और मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान। प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं खूबसूरत सी आवाज, इस आवाज के उस पार होगी आपसे मुलाकात। उम्मीद है कि आप लोग रहेंगे मेरे साथ साथ। राहत फतेह अली खान की आवाज और अम्मार बेग की, उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगेगी।

ऑलराइट, आपने सुनी खूबसूरत सी आवाज राहत फतेह अली खान और अमार की। उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। लेटेस्ट ट्रैक है, अभी से सिर्फ 5 दिन पहले रिलीज हुआ और आते ही छा गया। शायद अमार बेग की आवाज को लोग इतना ना पसंद करते, लेकिन राहत फतेह अली खान की आवाज की वजह से क्या कमाल का गाना बन गया और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया।

سوجنا مانے والے نئے موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں, اور ان کو کہیں گے کہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں. اگر تو آپ پروگرام میں میسج کرنا چاہیں یا کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے جلدی سے موبائل فون کا ڈائل پیڈ اوپن کر لیجیے. میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں, اس نمبر کو نوٹ کیجیے گا, سیو کیجیے گا, اور پھر واٹس ایپ پر جا کر اپنا خوبصورت سا پیغام جو ہے مجھ تک پہنچا دیجیے گا. دا نمبر از 01157100971. اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ پر میسیج یا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. اگر آپ تک ریڈیو ٹرانسمیشن ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تو آپ لائیو اسٹریمنگ کے تھرو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ گوگل پر جائیے گا اور جا کر لکھیے گا radiofaza.co.uk radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ پہ کلک کیجیے گا اور مجھے لائیو سن لیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ایک اچھے بزنس مین ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں ریڈیو فضا آپ کا ساتھ دے, تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا چاہے تو ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر ہی میسج چھوڑ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کر لے گی اور آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں آپ کا مزید ساتھ دے گی. ایپلیکیشن موبائل فون میں انسٹال کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. پلے اسٹور, ایپ اسٹور دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون میں رکھ لیجیے گا. دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی جگہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. 24/7 آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور تہاں تہاں کا میوزک, خوبصورت سی آوازیں آپ کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ ہمیں فضا ڈیپ پر بھی ٹیون کر سکتے ہیں, اور ہاں ڈرائیو کر رہے ہیں تو بی سیف, بی کیئرفل, بہت ہی احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا اور خود کا بھی خیال رکھیے گا. سو خیر چلیے اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں. سو ٹیسٹ اتنا سا ہے کہ بس آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی فوراً سے تین چیزوں کے نام لیں, کوئی بھی تین رینڈم چیزوں کا نام لے سکتے ہیں. اس میں ایک پھل سوچ لیجئے, ایک شہر سوچ لیجئے, اور ایک رنگ, کوئی بھی ایک کلر سوچ لیجئے. خوب سو آپ نے سوچ لیا ہوگا, اب غور کریں. آپ نے زیادہ تر وہی چیزیں سوچی ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں زیادہ آتی ہیں, اور اس چیز کو لے کر ایک دلچسپ بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت ہماری یادوں, تجربات اور ارد گرد کی چیزوں سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ہر وقت منفی خبریں دیکھیں گے, منفی باتیں سوچیں گے, ہر وقت شکایتیں سنیں گے, ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہیں گے, تو ذہن میں اسی سمت کی وہی تمام تر چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کا ذہن صرف وہی نگیٹو چیزیں سوچنا شروع کر دے گا. اس کے بدلے اگر آپ اچھی گفتگو سنیں, اچھی کچھ نیا سیکھیں, کتابیں پڑھیں, لوگوں کے تجربات سنیں, تو میرا خیال ہے کہ ذہن کے اندر نئے راستے تو بن سکتے ہیں. سو بس آج سے آپ نے ایک چھوٹی سی اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی, اور وہ یہ کہ روزانہ صرف 15 منٹ کچھ نیا سیکھنے کے لیے. کوئی بھی نئی زبان ہو جائے, کوئی ہنر ہو جائے, کوئی تاریخی واقعہ ہو جائے, کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو جائے, کوئی نئی کتاب ہو جائے, کچھ بھی کچھ بھی, صرف 15 منٹ روزانہ. آپ کو بتائے سال کے آخر میں یہی چھوٹے 15 منٹ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ کو بتائے سامعین کہ ایک اور چیز جو انسان کا سکون بہت تیزی سے کھا جاتی ہے وہ جو آپ کا سکون بہت جلدی کھا جاتی ہے وہ ہوتا ہے کمپیریزن. جی ہاں, جب آپ اپنا کمپیریزن لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ سب سے پہلا جو آپ کے اندر سے چیز کو ختم کرتی ہے وہ آپ کا سکون ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھو نئی گاڑی لے لی, وہ دیکھو کہ نیا گھر بنا رہا ہے, وہ دیکھو کہ دوسرے ملک جا رہا ہے, وہ دیکھو کاروبار میں کتنا آگے نکل گیا ہے. موسٹلی یہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑے رول لے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے فالوورز کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ اسے کتنا جاننا شروع ہو گئے ہیں. مطلب یہ کمپیریزن ہوتا ہے, مجھے نہیں جانتے لوگ, مجھے نہیں پہچانتے, میرے بارے میں, میں نے گھر نہیں بنایا, میں نے نئی گاڑی نہیں لی, بلا بلا بلا بلا. یہ کمپیریزن جو ہوتا ہے نا بہت بری چیز ہے, یہ آپ کا سکون کہا جاتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھتے ہیں جو آپ کو دیکھنا دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو ان کی راتیں نہیں معلوم, آپ کو ان کے قرضے نہیں معلوم, آپ کو ان کی پریشانیاں نہیں پتہ, آپ ان کے گھر کے مسائل نہیں جانتے, آپ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی سے اس تصویر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ये तो अपनी ज़ात के साथ कोई इंसाफ ना हुआ। सो अपनी ज़िंदगी की कंपैरिजन कल वाले अपने आप से करें, अगर आपको कंपैरिजन करने का शौक़ है ही तो खुद से खुद का कंपैरिजन कीजिए। आज से 2 साल पहले आप क्या थे, 2 साल के बाद आप क्या वहीं पर खड़े हैं या कुछ आगे बढ़े। और अगर आपको लगता है कि आपका आज आपके कल से एक कदम भी बेहतर है तो यकीन कीजिए आप जीत गए हैं। अब एक सवाल है आपसे, मेरे से बल्कि मैं आपसे नहीं कह रहा, आप खुद से खुद एक सवाल करें कि अगर आपको अगले 6 महीने में अपनी ज़िंदगी की सिर्फ एक चीज़ को बेहतर करना हो तो आप क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में खुद की बेहतर करेंगे। पैसा, सेहत, कारोबार, तालीम, रिश्ते, वक्त, गुस्सा या शायद अपनी सोच। सिर्फ एक चीज़ को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब इंसान हर चीज़ एक साथ बदलने की कोशिश करता है ना तो अक्सर कुछ भी नहीं बदल पाता। लेकिन अगर आप एक चीज़ पर मुसलसल काम करेंगे तो नतीजा ज़रूर आता है। और यही चैलेंज आपको शायद आगे लेकर जाएगा। बस करना इतना है कि 6 महीने आपने इस किसी एक चीज़ को पकड़ कर उस पर मेहनत करनी है। वेल, खैर मेरा ख्याल है कि ड्राइव टाइम में इतनी वो लेक्चरार वाली बातें तो अच्छी भी नहीं लगती, तो थोड़ा सा संजीदगी को ख़त्म करते हैं और आपसे एक सवाल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ किस वक्त बोला जाता है आपके ख्याल के मुताबिक। ज़रा बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाएं, सोच के मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ जो है वो किस वक्त बोला जाता है। अगर नहीं पता तो चले मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा झूठ शायद, मैं मतलब कंफर्म नहीं कहता लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा झूठ जो है ना वो शायद रात को बोला जाता है, और वो भी अपने आप से। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मतलब कोई ड्रामा देख रहे हैं और आप कहते हैं कि बस एक और एपिसोड देख लेता हूँ, बस 5 मिनट और मोबाइल चला लेता हूँ, कल से जल्दी सोऊंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, अपनी डाइट पे तवज्जो दूंगा, कल से फजूल खर्ची बंद कर दूंगा। सबसे मशहूर जो चीज़ हमारी होती है कि इस मंडे से पक्का चेंज कर दूंगा, और फिर जब मंडे आता है तो हम कहते हैं चलो अगले मंडे से। आपको लगता है अगर आप भी ये चीज़ करते हैं तो आज से ये असूल बना लीजिए कि किसी मंडे का इंतज़ार नहीं करना, जिस दिन ख्याल आया उसी दिन उस काम को शुरू कर देना, क्योंकि बेहतरीन वक्त हमेशा आज होता है, कल नहीं। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, जब कल पे छोड़ोगे तो वो कल कल कल ही हो जाए, अगर कल कभी नहीं आती अगला दिन आता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बदलना चाहते हैं और आप हमेशा ख़ुद को टालते रहते हैं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नेक्स्ट मंडे कर लूँगा, मत कीजिएगा ऐसा। जिस वक्त पे याद आए उसी वक्त कर लीजिएगा। मैं चूँकि एक राइटर हूँ तो मुझे इस बात का पता है कि मुझे जो भी चीज़ मेरे जहन में आती है, और मैं कभी भी रात को मोस्टली ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें होती हैं जब बंदा सोने के करीब होता है ना तब बंदे को बड़े ऐसे ख्याल आते हैं, तो मेरे पास जब भी कभी कोई ख्याल आता है तो मैं कभी भी उसे सुबह पर नहीं छोड़ता, कल पर नहीं छोड़ता, मैं उसे फ़ौरन से उठ के उस चीज़ को नोट कर लेता हूँ, कल याद रहे ना रहे। तो इसलिए जो अभी आमद आई है उसको पकड़ो, उसको नोट करो और फिर कल उस पर काम उस पर कर लेंगे, एटलीस्ट कुछ तो होना आपके पास कल करने के लिए। 100 में से 70% ऐसा होता है कि आप जो रात को सोचते हैं ना कि सुबह उठ के ये करूँगा, वो नहीं होता। तो इसलिए आपने कभी भी आज को कल पर नहीं छोड़ना, जो काम जिस वक्त आपने करना है उसको उसी वक्त कर दीजिएगा, कल पर कभी मत छोड़िएगा। ख्याल रखिएगा समझ की, ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है ना वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी कामयाबी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा कारोबार, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मैं कह नहीं रहा कि बुरी हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक छोटी सी अच्छी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। आप अपना हिसाब लगाइए, अपने आस पास देखिए, सुकून से सुबह का उठना, अपने लोगों के साथ बैठ कर खाना खाना, अपने वालिदैन की आवाज़ सुनना, बच्चों की हंसी सुनना, दोस्त का अचानक से फ़ोन आ जाना, बारिश में चाय का अपना एक अंदाज़ लुत्फ लेना, किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो अपने पसंदीदा ट्रैक सुनना, और कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचना आज का दिन बुरा नहीं था, बस
हर खुशी को बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ खुशियाँ जो होती हैं ना, वो छोटी रहें तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको बड़ी ही चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपकी ज़िंदगी में अगर आपके साथ रहें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। खैर जनाब, आज की आखिरी बात करते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। सो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, मेरे तमाम तर सामाई लिसनर्स, आपको बताते चलें कि ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया सफ़ा देती है, लेकिन हम अक्सर पिछले सफ़े को पढ़ते हैं और बस उसी को पढ़ते रहते हैं। और फिर वो जो नया सफ़ा हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारी बुक का एक नया पेज जो होता है, वो हमेशा ज़ाया कर दिया जाता है। देखिए, जो हो गया वो तो कभी वापस नहीं आएगा। जो कहना था और नहीं कहा, शायद अब भी कहा जा सकता है। जिससे माफ़ी मांगनी थी, शायद आज मांगी जा सकती है। जरा सोचिए, जिस काम को आप कल पर छोड़ देते कि कल शुरू करेंगे, शायद आज उसका पहला कदम उठाया जा सकता है। और फिर जिस ख्वाब को हम ये कहकर रोक रखा है कि अब बहुत देर हो गई है, याद रखिए, देर और एहतमाम एक चीज नहीं है। देर हो सकती है, लेकिन जब तक सांस है, रास्ता मौजूद है। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदल सकता हूँ। और जवाब चाहे बहुत छोटा हो, उस पर अमल भी कीजिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रात सोने से पहले ही उस पर अमल शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बनती। कभी कभी एक छोटा फैसला, एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी माफी, एक छोटी कोशिश और एक छोटा सा कदम इंसान को बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पहुंचा देता है। सो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा ड्राइव टाइम शो। अगर आज की गुफ्तगू में कोई बात भी आपके दिल को लगी है, सो उसे अपने तक महदूद कभी मत रखिएगा, बल्कि शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अगर कुछ चीज़ अच्छी लग गई है तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, शायद आज आपसे ज्यादा उसको जरूरत हो। सुबह में आपका मेजबान आरजे उस्मान खान फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से चाहता है इजाजत। यह है जनाब रेडियो फजा 97.1 FM, जिसको आप सुन रहे हैं। यहाँ पर सफर सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, कुछ सफर ख्यालात के भी होते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी एक मुस्कुराहट भी दूसरे किसी इंसान का पूरा दिन बदल सकती है। सो चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रेडियो फजा 97.1 FM आपका तो है। खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत से ट्रैक्स, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। फिलहाल आपका मेजबान उस्मान खान चाहेगा आपसे इजाजत। तब तक रेडियो फजा 97.1 FM के साथ रहिए खुश, हंसते और मुस्कुराते रहिए। अक्सर कहा करता हूँ कि वहां से प्यार ले लीजिएगा जहां पर प्यार बट रहे, और बाखुदा वहां पर प्यार दे दीजिएगा जहां पर प्यार की जरूरत है। मोहब्बत, चाहत और खूबसूरत सी स्माइल के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपको छोड़े जा रहा हूँ खूबसूरत से ट्रैक के साथ। तब तक के लिए आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगे

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम डैब लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। दिस इज अ लाइव ब्रॉडकास्ट विद जकी खान, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल बखैरियत होंगे और आपके हाल अहवाल भी यकीनन ठीक होंगे। ठीक ना सही हो लेकिन गुजारा जरूर हो रहा होगा। जी हाँ, आज का हमारा ये जो बीजीएम है यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बिल्कुल न्यू है हमारे शो के लिए और उम्मीद है कि आपको यकीनन पसंद आएगा। हमने सोचा थोड़ी सी तब्दीली कर लेनी चाहिए। तब्दीली अच्छी होती है, इंसान को तब्दील नहीं होना चाहिए लेकिन चीजें तब्दील होती रहती हैं। इंसान को सिर्फ पैदा होना चाहिए और फिर फना हो जाना चाहिए। हाँ, अपनी बेहतरी के लिए अपनी पर्सनैलिटी में अगर आप चेंजेस लाते हैं तो वो ठीक है। और इसके साथ आपको बताया चलें कि ये शो आप सुना करते थे 7 to 9 PM, लेकिन अभी हमारा चूंकि विंटर आने वाला है, ऑटम में हम एंटर हो चुके हैं। वेलकम ऑटम एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारी जितना टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है, वो हुआ करेगी 6 to 8 PM। जी, आपका मेरा साथ रहेगा शाम 8 बजे तक। जी हाँ, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड, वो शो जहां हम बात को फिल्टर नहीं करते, बस कभी कभी मिर्च थोड़ी कम कर देते हैं। और आज का टॉपिक है, बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता चलें कि आप हमें सुन किस तरह से सकते हैं, ना सिर्फ एफएम पे, गाड़ियों में डैप पर भी। और हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk, हमारी ऐप भी है, आप ऐप स्टोर पे जाइए, एप्पल पे हो या फिर iOS पे, आप जाके टाइप कीजिए रेडियो फजा। पर्पल बैकग्राउंड एंड गोल्डन माइक आप सबके लिए। रेडियो फजा रनिंग दिस रेडियो स्टेशन फ्रॉम लास्ट 23+ इयर्स, आई वुड से 25 साल से ज्यादा तो हो ही चुके हैं हमें। और हम सोच रहे हैं कि हम अपनी 25वीं सालगिरह मनाए, क्या कहते हैं आप सब, और अपनी तमाम कम्युनिटी को इनवाइट करें, आए और हमारे साथ सेलिब्रेट करें। लेट्स प्लान समथिंग, अगले साल ही करेंगे, अभी तो साल खत्म होने वाला है, काफी मसरूफियात भी हैं, सो लेट्स डू इट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहें तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं 0115-7100-971 पे। आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो आप इसी नंबर पे कीजिएगा, हम आपके मुंतजर रहेंगे। तमाम सामेईन को मेरी तरफ से, जकी खान की तरफ से, रेडियो फजा की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद।

आज का जो टॉपिक है, आज की जो डिस्कशंस हैं, वो बड़ी चटपटी सी हैं, बड़ी मसालेदार हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी। आप सोच रहे होंगे कि मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड में बिरयानी कहाँ से आ गई भाई, लेकिन जरा सोचिए, बिरयानी में चावल है, मसाला है, गोश्त है, आलू भी हो सकता है, अगर आप उसे कंट्रोवर्शियल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं तो। कहीं तेज मिर्च, कहीं हल्की, कहीं रंग ज्यादा, कहीं फ्लेवर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं क्या है, असली टेस्ट किसी एक चीज का नहीं होता, टेस्ट तब बनता है जब सारी लेयर्स एक साथ आती हैं। जी हाँ, लाइक आवर सोसाइटी, लाइक आवर फैमिलीज, एग्जैक्टली लाइक रिलेशनशिप्स, और एग्जैक्टली लाइक हम खुद। आज हम पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल फैमिली सिचुएशन से इंस्पायरेशन लेते हुए पूछेंगे, अगर जिंदगी एक बिरयानी है तो आप कौन सी लेयर हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि ये बिरयानी कहाँ से मेरे जहन में आया। रिसेंटली एक ड्रामा मैंने देखा, ARY डिजिटल पे है, और उस ड्रामे का नाम है बिरयानी। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें सस्पेंस भी है, इसमें तंजो मज़ा भी है, इसमें थ्रिल भी है, इसमें ड्रामा भी है, और इसमें ट्रेजेडीज भी हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि इसको खास बनाती है, वो है इसकी स्टोरी। यकीन मानिए, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बड़ी प्यारी कहानी है। सिर्फ दो लोगों पे मुश्तमिल है, पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है, लेकिन यकीनन इसमें बहुत सारी कास्ट हैं। तो जब ये ड्रामा मैंने देखा, और मेरी आदत ये है कि ड्रामा मैं तब शुरू करता हूँ जब वो ख़त्म हो चुका हो, यानी कि उनकी एपिसोड जो हैं बिल्कुल एंड पे जा चुके हों, और मैं तब देखना शुरू करूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई कौन वेट करता रहे कि अगली एपिसोड आएगी तो आप देखेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, यानी कि ड्रामा ख़त्म हो चुका फिर देखना है, या फिर आप एपिसोड्स का वेट करते हैं? बताइएगा, हमें कॉल कीजिएगा 01157100971 पे। आपको सुनाता हूँ इसी ड्रामे का जो OST है, आज हम सारे के सारे OST सुनेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, फ्रॉम द ड्रामा बिरयानी, वो हो तुम।

आपसे पूछा गया था कि अगर आप बिरयानी हैं तो आप कौन सी लेयर हैं। जी हाँ, लेयर जो तय बिछाई जाती है जब बिरयानी बनाई जाती है। हम चाहेंगे कि अगर हमारी जो फीमेल लिसनर्स हैं, जो मेल हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन फीमेल ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, अगर आप हमें तरकीब बता सकें कि बिरयानी किस तरह से बनाई जा सकती है, आपकी बिरयानी में क्या ख़ास बात है और उसमें कौन कौन सी लेयर जाती है। और देखिए ना, हमारे लिए बहुत सी बातें प्रैक्टिसिंग होती हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अगर इस ज़िंदगी एक बिरयानी है तो आप कौन सी लेयर हैं, और क्या हम दूसरों को सिर्फ उनकी ऊपर वाली लेयर देखकर जज कर रहे हैं। फोन लाइंस और व्हाट्सएप खुले हैं, आज सीरियस बात भी होगी, हंसी मजाक भी होगा और मुमकिन है आज शो के एंड तक आपको बिरयानी ऑर्डर भी करनी पड़ जाए। हमारे एक चाचा हुआ करते थे, वो कहा करते थे यार बिरयानी खानी है तो गीली बिरयानी खानी है। पंजाबी में कहा करते थे यार सिज्जी बिरयानी खवाल। जी हाँ, सिज्जी बिरयानी का मतलब ये होता है कि गीली बिरयानी।

जब बिरयानी टेबल पर आती है ना, तो पहली चीज क्या नजर आती है? खूबसूरत चावल, फ्राइड ऑनियंस, हरा धनिया, लेमन, शायद बॉइल्ड एग्स। प्रेजेंटेशन तो उसकी 10x10 होती है, लेकिन टेस्ट वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। क्या मॉडर्न सोसाइटी भी ऐसी नहीं है? आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, परफेक्ट फैमिली होगी, परफेक्ट कपल होंगे, परफेक्ट हॉलीडेज होंगी, परफेक्ट बच्चे होंगे, परफेक्ट घर होगा और परफेक्ट स्माइल भी होगी, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद नोबडी नोस। हमारी सोसाइटी में एक नया प्रेशर डेवलप हुआ है, खुश रहने से ज्यादा खुश नजर आना। ये बड़ी पाए की बात है, इस पर भी बात कर सकते हैं कि क्या हमें वाकई हम इस प्रेशर में हैं कि खुश रहने से ज्यादा खुश नजर आना चाहिए, यानी कि लोगों को दिखाना चाहिए। चैलेंजी के साथ, इसी के साथ सुनाते हैं आपको और एक और खूबसूरत सा ट्रैक। ओएसटी है ये, और ये ओएसटी है आसिम अज़र ने इस को गाया, जिसमें है वजा अली और आयजा खान पे ये फिल्माया गया ओ आर वाई डिजिटल से। मैं, जी हाँ, आपकी ही बात हो रही है।

जी हाँ, ये कहानी है सिर्फ मैं की। मैं कौन? हम। हर इंसान मैं होता है, लेकिन जब उसमें मैं आ जाती है तो फिर वो मैं नहीं रहता, वो कोई और बन जाता है। क्या आपको भी ये बीमारी है? जी हाँ। आप जानते हैं मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ? ये वो लेयर है जो हमने अपने ऊपर चढ़ाई होती है। हम अपने आप को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानते। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप से वाकिफ हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हमें हमसे वाकिफ करवाते हैं, हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM डैब लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। दिस इज मी ज़की खान इन अ प्रोग्राम मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड। आज बात हो रही है बिरयानी पे, कि जिस तरह बिरयानी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसी तरह से हमारी जिंदगी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेकिन कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं कि बिरयानी में तो चलो हमने उसे मिक्स किया और एक जायकेदार बिरयानी बनी और हमने खा ली, लेकिन जो जिंदगी की लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हम उठा नहीं सकते। सिर्फ वो यादों की सूरत में ही हमारे जहन नशी हो जाती हैं, या फिर हमारे दिल के किसी कोने में जाके बैठ जाती हैं, जिसके दरवाजे दर हम बंद कर लेते हैं। खिड़कियों से वो हवाएं भी नहीं आती। ना जाने ये कौन सी ऐसी लेयर्स हैं। जी हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हम इस पे सोचना नहीं चाहते। हमें सोचना चाहिए अपने बारे में और हमारी जिंदगियों के बारे में, कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। इंसान पैदा होता है, एक वक्त आता है जब वो फोत हो जाता है, फना हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज ने फना हो जाना है, इसी तरह इंसान ने भी फना हो जाना है। लेकिन इंसानों का ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ और न जाने कयामत तक ये खत्म होगा। लेकिन इंसानों का रवैया, इंसानों की सोच वक्त के साथ साथ बदलती चली गई है ना। ये एक बड़ी रमज की बात है और बड़ी गहरी बात है, सोच और फिक्र की बात है। हमारा काम ये है कि आपको सोच और फिक्र में डालना, आपको फिक्रमंद करना नहीं। क्योंकि देखें, सोचने से, सोचना जरूर चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग करने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इंसान पैदा हुआ, छोटा सा एक बच्चा है, और उस बच्चे की अपनी एक जिंदगी है जो कि ब्लेस्ड है। उसके माँ बाप हैं उसके सर पे, उसके बड़े बहन भाई हैं और रिश्तेदार हैं, सब उसको बहुत लाड प्यार करते हैं। जब वो चलना सीखना सीख जाता है, उसे लगता है कि मैं अपने कदम खुद ले सकता हूँ, तब उसका कोई हाथ ना थामे। उसे उलझन होती है अगर उसका कोई हाथ थामे तो, लेकिन हमें इस बात की परवाह होती है कि वो कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। हम उसे अपने हाथों से निवाला खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो खुद खा सकता है, खुद पानी पी सकता है, यानी कि ग्लास उसके हाथ से नहीं गिरता। तब उसे लगता है कि मुझे अब इनकी जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, उसको खाना तैयार ही चाहिए। जाहिर है कि जब जब कोई बच्चा होता है तो इतना ज्यादा सोच नहीं सकता, उसकी तो बस ख्वाहिशों का एक अंबार होता है उसके सामने। जब अपने बड़ों को देखता है और उसका जी चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं। वैसे आप सब जानते हैं कि कभी मैंने अपने बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ना बचपन में बड़ा होने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने 14 साल की उम्र में ही शेव कर ली थी, ताकि जल्दी जल्दी से मेरी दाढ़ी आ जाए, मूछें आ जाए और मैं बड़ा बड़ा दिखने लगूं। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम फिर सोचते हैं कि यार, हम बड़े ही क्यों हुए थे, हम छोटे ही रहते। किसी दौर में दिखावा नहीं हुआ करता था। हम और लेयर्स की बात करेंगे, बहुत कुछ और कहने के लिए और सुनने के लिए भी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 10115710097 पे।
हमें कॉल कीजिए और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप इसी नंबर पे, हम आपके मुंतजर हैं। हमें कुछ पैगाम आए हैं, कुछ मैसेजेस हमें व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, उनको शाम में प्रोग्राम करेंगे एक एक करके। मैविश ने एक बड़ा प्यारा मैसेज किया है, कहती है कि हमारे पेरेंट्स के सामने, हमारे पेरेंट्स के जमाने में लिखा हुआ उन्होंने, हमारे पेरेंट्स के जमाने में हम लोग ड्राइंग रूम, जो हमारा फ्रंट रूम होता है यहाँ पर कहा जाता है, और पाकिस्तान में उसको कहा जाता था ड्राइंग रूम, हम उस ड्राइंग रूम को साफ किया करते थे अपने मेहमानों के लिए। और आज हमारे जमाने में हम पूरी जिंदगी सोशल मीडिया के मेहमानों के लिए डेकोरेट करते हैं। फोटो लेने से पहले रुको रुको प्लेट को इधर करो, ग्लास हटाओ, लाइट अच्छी नहीं, बच्चों स्माइल क्लिक, और कैप्शन में क्या जाता है, कैप्शन में जाता है ब्लेस्ड फैमिली टाइम, और फोटो से 30 सेकंड पहले मैं कह रही हूं फोन बंद करो, यही मॉडर्न लाइफ की फर्स्ट लेयर है। और कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जो कि शील्ड का काम करती हैं और कुछ फ्रेजाइल का। उम्मीद आप समझ तो गए होंगे, वाकई आप हैं काफी समझदार। इसी के साथ समझदार लोगों के लिए मैं एक और ट्रैक लेके आया हूँ, बड़ा प्यारा ट्रैक है, एक ओएसटी है उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, जिसमें वजह अली हैं और माया अली हैं। सुन मेरे देव, दिल कहाँ सुनता है, बस दिल तो भड़काता है।

ये जो मेरा इश्क है। आप जानते हैं कि हर इंसान का इश्क एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि हम बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से, इसी तरह से हमारा इश्क भी अलग होता है। हमारा इश्क मैंने जब कहा तो वो इश्क जो हम करते हैं, जो हम महसूस करते हैं। इश्क की भी कुछ लेयर्स होती हैं। वैसे कहा जाता है कि प्यार, मोहब्बत और इश्क ये लेयर्स हैं। पहले प्यार होता है, फिर मोहब्बत हो जाती है और फिर इश्क में मुब्तिला हो जाते हैं। पता नहीं ये बात कहां तक सच है। अगर आप अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप यकीनन कर सकते हैं। वैसे ये बात नोट की है कि कोई अपने इश्क के बारे में बात नहीं करता, और ये भी कहा जाता है कि जिंदगी में इंसान को एक ना एक बार तो इश्क जरूर होता है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। दिस इज मी ज़की खान, मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड में आप सब आपके सामने हाजिर। जिन लोगों ने अभी रेडियो ऑन किए, आप सबको खुश आमदेद हमारे इस शो में, जो कि होता है हर बुध की शाम 6 से लेके 8 बजे तक। अभी आपके सामने एक मैं सिनेरियो रखता हूं, जो कि हमें एक सिनेरियो भेजा है अमजद ने। आज बड़े मजे मजे के मैसेज आ रहे हैं और बकायदा वो मेहनत कर रहे हैं, लिख कर हमें भेजवा रहे हैं। कहते हैं कि इमेजिन अ पाकिस्तानी ड्रामा सीन, डाइनिंग टेबल ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती के साथ वो सजा हुआ है, और अम्मी कह रही हैं बेटा सब ठीक है। बेटा कहता है अम्मी आप परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है, कैमरा स्लोली जूम करता है और हम सब जानते हैं अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है। यही प्रॉब्लम है, हम कहना सीख गए आई एम फाइन, लेकिन एक्सप्लेन करना भूल गए आई एम स्ट्रगलिंग। हर खूबसूरत बिरयानी टेस्टी नहीं होती और हर खूबसूरत जिंदगी खुश नहीं होती, इसलिए कंपैरिजन से पहले याद रखें, आप किसी की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनकी पूरी प्लेट नहीं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत अमजद भाई, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, ये इसी तरह से है जैसे कि हमारी बिरयानी के बारे में आज बात कर रहे हैं। ये भी पता चले जो आज का हमारा डिस्कशन है वो है बिरयानी, क्योंकि ये लेयर्स के ऊपर बनती है। तो हमारी ज़िंदगी की कुछ लेयर्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमारा बचपन है और उसके बाद हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमारी एक टीन एज आ गई हमारी उम्र, और उस टीन एज में हम क्या करते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, और स्पेशली आजकल के दौर की बात की जाए तो बहुत सियाने भी हैं, सब कुछ समझते हैं उन्हें लगता है, क्योंकि वो सारी नॉलेज जो उन्हें मिली हुई है वो उन्हें मिली हुई है सोशल मीडिया से या फिर ऑनलाइन। क्योंकि जो हकीकी ज़िंदगी है उसमें तो हम वक्त बहुत कम अपना गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहुत रेयर टाइम है जो हम उनके साथ स्पेंड करते हैं, और जब हम उनके साथ इतना वक्त नहीं गुजारते तो फिर हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे बेस्ड है, और सोशल मीडिया जो आपको सिखाना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है, वही बताता है। और टीनएजर्स भी पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में। खैर टीनएजर तो होता ही स्कूल में है, और उसकी अपनी कुछ लेयर्स होती हैं और बहुत मासूम होते हैं बेशक, लेकिन अक्सर हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत शैतान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान है, वो शैतानियां करता है, और कहते हैं जो शैतानियां करता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। पहले कोई बहुत रेयर होता था, हम कहते थे कि यार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आजकल के सारे बच्चे ही इंटेलिजेंट हैं। उनकी लेयर्स को समझने के लिए उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें लगता है कि हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड देम। क्या ऐसा है कि हम उन्हें नहीं समझते, या बस उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें नहीं समझते? हम उन्हें तब समझेंगे जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये जो टीनेज होती है बहुत ही नाजुक होती है।
इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। मेरे ये इल्तमास है आप सबसे कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ आप जितना वक्त गुजार सकें वो गुजारिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि ना जाने वो किसी गलत रास्ते की जानिब चल पड़े। तो बेसिकली जो स्कूल से लेके घर तक जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है वहीं बच्चे खराब होते हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चों को खुद पिक करें और खुद ड्रॉप करें, और पिक एंड ड्रॉप के दौरान आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनको जान भी सकते हैं, उन्हें समझ भी सकते हैं, और उनके डेली मामलात भी उनसे आप उनसे पूछिए और अपनी स्टोरी साथ साथ सुनाते रहा कीजिए। लेकिन उनको स्टोरी जब अपनी सुनाएं तो अक्सर ये होता है कि जब हम स्टोरी अपने बच्चों को सुनाते हैं ना तो वो नसीहत के तौर पे एडवाइस की तौर पे सुना रहे होते हैं। उनको ये ना किया करें, उनको ना फन के सोच से नज़रिए से उनको सुनाया करें कि बेटा हमारे ज़माने में ये होता था और हम ऐसे करते थे। आपका अपना टाइम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक अपना टाइम आता है, अपना भी टाइम आएगा। लेकिन अभी टाइम हुआ चला है आपको एक और ट्रैक सुनाने का, मेरी जिंदगी है तू।

आपने नोट किया उसने क्या कहा? मुझे मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत होती थी, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत की कितनी लेयर्स हैं। एक लेयर ये भी होती है कि हम शादी से पहले हम बात कर रहे थे बचपन की पे, टीनेज की, अब जवानी पे आ जाते हैं, हम शादी पर बाद में आएंगे। ये तो आप सबका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। हमारा जो सेगमेंट है, हमारा जो आज की डिस्कशन है, वो हो रही है बिरयानी पे, यानी कि जो बिरयानी की लेयर्स होती हैं वही हमारी लाइफ की लेयर्स भी हैं। उसमें मसाला भी है और उसमें बहुत कुछ है। कहते हैं कि जवानी बड़ी बेबाक होती है, जवानी में इंसान से बहुत सारी गलतियां सरजद होती हैं, जवानी को संभालना मुश्किल होता है। जवानी में अगर कुछ गलतियां हो जाए तो वो सारी जिंदगी के लिए एक दाग आपकी जिंदगी पे भी लग सकता है। जवानी वो शह है जिसमें आपके बड़े भी आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा हमारा अब जवान हो चुका है, ये अब अपने आप को संभाल लेगा। क्योंकि देखिए, जो बचपन है या फिर टीन एज है, ये तो है ब्लैक कैनवस की तरह, लेकिन जो जवानी है वो ऐसे ही है कि आपने उसके ऊपर रंग भर दिए, आपने जितने मसाले डालने थे आपने डाल लिए, उसको आपने बिल्कुल इस दुनिया में जीने का अंदाज सिखा दिया, वो अपनी जिंदगी आप खुद बनाए। और क्या वो अपनी जिंदगी के फैसले कर पाता है, अच्छे या बुरे? जवानी बहुत खूबसूरत होती है। जवानी में हम सब भी बहुत खूबसूरत होते हैं, हमारी फ्रेश स्किन होती है, हमारे अंदर एनर्जी होती है, जोश होता है, जज्बा होता है, कुछ कर दिखाने का। और ये जो प्यार मोहब्बत और इश्क है, ये भी जवानी में कुछ ज्यादा ही होता है, और यकीन मानिए बार बार होता है। रिश्तों में भी अगर आप जायका देना चाहते हैं तो अपने रिश्तों में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह के आपके अगर मसाले बैलेंस नहीं है बिरयानी के, तो आपकी बिरयानी का वो टेस्ट नहीं बनेगा। देखिए ना, जिस तरह के चावल अकेले होते हैं, ठीक है, गोश्त अकेला है, ठीक है, लेकिन बिरयानी को बिरयानी बनाता क्या है? बिरयानी मसाला। और फैमिली लाइफ का मसाला क्या है? आपके रिश्ते। इंसान चाहे तो कहते हैं कि मुझे अपना मी टाइम चाहिए, मुझे अकेला भी रहना है, वक्त गुजारना है, जो कि बहुत अच्छा है, जरूरी है, लेकिन रिश्तों की अपनी एक अहमियत होती है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे, सास बहू और बहुत सारे और रिश्ते, जैसे कजन्स हो गए, आंटीज हो गए, नाना नानी, दादा दादी, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं। उनमें एक रिश्ता दोस्तों का भी होता है, जिनकी भी लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत से ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि एक अपने चेहरे पे एक लेयर रख के बैठे होंगे, जिसे हम मास्क भी कहते हैं, जिसे हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हमें वक्त के साथ साथ हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर आपका वो दोस्त है तो क्यों है। वो शायद इसलिए है कि उसे आपसे कोई गर्ज है, या वाकई उसको आपसे प्यार है।
پرانے زمانے کی دوستی اور آج کی دوستی کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر مسالہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی بڑی بدسوادی ہے، اس کا ذائقہ آپ نہیں لے سکتے، ہے نا۔ چلیے جی، اسی کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں ایک اور خوبصورت سا ٹریک، تیرے بن، اس میں ہے یمنا زیدی، دین اگین وجہ علی، شانی ارشد کی آواز میں، تیرے بن۔

जी हाँ, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM डैब. जब हम डैब कहते हैं ना, तो डैब है बेसिकली डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट. और उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स को इस बात का पता होगा, जिसे हम बार बार प्रमोट भी करते रहते हैं, कि अगर आपके पास नई गाड़ियां हैं तो उसमें डैब यकीनन होगा. डैब दरअसल एक प्लेटफॉर्म है, जैसे FM है. आप जाएंगे ना अपने रेडियो पे, तो सोर्स पे जाइए. सोर्स पे जाके आपको FM नजर आएगा, फिर डैब नजर आएगा. तो डैब को आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप सर्च कीजिए, आपको सिर्फ फजा नजर आएगा, FAZA. वहां जाके उसे क्लिक कर लीजिए, फेवरेट्स में भी सेव कर लीजिए. तो डैब में जब आप सुनेंगे तो आपको हाई क्वालिटी और डिजिटल क्वालिटी सुनाई देगी. FM में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन डैब में आपको डिजिटल क्वालिटी सुनाई देगी. और उसके अलावा आप हमें सुनना चाहें तो हमारी ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं. ना सिर्फ इतना, बल्कि हमारी वेबसाइट है, विच इज radiofaza.co.uk. प्रोग्राम के दौरान आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप रेडियो फजा को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं और एक अच्छी सोच से आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप अपना वक्त दीजिए. अपना वक्त देना भी एक चैरिटी है, और आपको वॉलंटरी काम करने का एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाएगा. हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे और आप इसी तरह हॉट सीट पे बैठ के अपना खुद का प्रोग्राम भी कर सकते हैं. एज आई ऑलवेज से दैट यू विल ऑन योर रेडियो प्रोग्राम इज गोइंग टू बी योर ओन रेडियो प्रोग्राम. अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 07715299779. माई नेम इज जकी खान. आप सबके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड, एक ऐसा शो जिसमें हम हमारी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल इसमें कोई फिल्टर नहीं होते. तो हमें फिल्टर्स की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर हमारी फोटो में फिल्टर ना हो तो हमें मजा भी नहीं आता. अरे यार, फिल्टर तो अपनी जगह पे रह गए. आजकल तो AI आ चुका है. जी हाँ, और AI हमारे लिए फोटोज तैयार करता है हमारे, जिसमें हम इतने हसीन, खूबसूरत और जवान दिखते हैं. आप ज्वाइन करना चाहें हमारे इस रेडियो शो पे, हमसे बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो हमारा नंबर वही है 01157100971. आज हम बात कर रहे हैं बिरयानी पे. बिरयानी की जितनी लेयर्स होती हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी की भी कुछ लेयर्स हैं. रिश्तों में फ्लेवर डिसएग्रीमेंट से आता है, लेकिन कितना मसाला ज्यादा मसाला बन जाता है. हर डिसएग्रीमेंट टॉक्सिक नहीं होती. हम कहते हैं ना कि वो शख्स बदल गया, शादी के बाद बदल गया, टॉक्सिक हो गया, इनसिक्योर हो गया. वो तभी मुमकिन है कि आपके दरमियान बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अगर आप दोनों एक साथ चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एक्सेप्ट करें. टू पीपल कैन लव ईच अदर एंड स्टिल डिसएग्री. क्या ये पॉसिबल है? हम डिबेट अगर करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम चले जाते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ. अब जैसे कि दो जनरेशन्स एक ही घर में रहकर दुनिया को बिल्कुल डिफरेंटली देख रहे होते हैं. मिसाल देता हूं कि हमारे पेरेंट्स, बेटा तुम्हें परमानेंट जॉब देखनी चाहिए, लेकिन बेटा क्या कहता है, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं. माँ बाप कहते हैं, कंटेंट क्या? वीडियो बनाता हूं. बेटा जॉब क्या करते हो? ये बड़ी एक मीम है, बड़ी फेमस सी. कि किसी ने पूछा कि बेटा आप क्या करते हो? जी मैं कंटेंट बनाता हूँ. अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप काम क्या करते हो? क्योंकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती. यकीनन अलग एक सोसाइटी है, अलग एक इंडस्ट्री है जिसमें कंटेंट बनाया जाता है. आजकल तो AI भी आपके लिए कंटेंट बना रहा है, वीडियोस बन रही हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं और उसी से पैसा भी कमा रहे हैं. एक डीपर डिस्कशन है जिसकी तरफ हम अब जाएंगे. वैसे मॉडर्न फैमिलीज में ना एक इंटरेस्टिंग कंफ्लिक्ट है. ओल्डर जनरेशन ऑफ्टन वैल्यूज सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रेपुटेशन एंड सैक्रिफाइस, बट द यंगर जनरेशन ऑफ्टन वैल्यूज फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी,
मेंटल पीस एंड एक्सपीरियंस। अब देखा जाए तो इनमें कौन सही है, शायद दोनों, या फिर प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहते हैं सिर्फ मेरी लेयर इंपॉर्टेंट है। बिरयानी में अगर मसाला कहे चावल की जरूरत ही क्या है, डिश खत्म। सोचें इस बात पे और फिर दोबारा गौर कीजिएगा। क्या आप मसाले से सिर्फ बिरयानी खा सकते हैं? नहीं ना, उसमें चावल भी जाएंगे। और अगर चावल कहे कि मसाला बहुत ड्रामेटिक है, इसको निकालो, फिर भी डिश खत्म। फिर वो सिर्फ व्हाइट सादा चावल बनेंगे जो कि हलक से भी नीचे नहीं गुजरते। वैसे अपार्ट फ्रॉम जोक, लोग ना, कई लोग बिरयानी जब खाते हैं तो उसमें ना सब कुछ मिक्स कर देते हैं, सैलड भी, चटनी भी, और उसको कुछ और ही बना देते हैं। हालांकि कभी ये ट्राई कीजिएगा कि बिरयानी को सिर्फ बिरयानी करके खाइए। अगर पुलाव है, चाहे वो चने का है, चाहे वो गोश्त का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, तो उसे भी सिर्फ और सिर्फ अकेले खाइए। अकेले से मुराद ये नहीं कि अकेले बैठ कर खाइए, यानी कि सिर्फ वही खाइए, उसमें दही ना डालें, उसमें आप सैलड ना डालें। यकीन माने आपको उसका टेस्ट तभी आएगा। अच्छा, उसका टेस्ट हमें क्यों नहीं आता? हमें उसमें योगर्ट का भी टेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि योगर्ट होता है ठंडा, और हमारी जो डिश है, फॉर एग्जांपल बिरयानी की आज बात हो रही है, तो वो होती है गरम, तो वो ठंडा गरम मिक्स करके ना उसका जायका ही कुछ और हो जाता है। तो लिहाजा बिरयानी को ट्राई टू ईट इट्स ऑन, ट्रस्ट मी। आज पता नहीं क्यों बिरयानी के बारे में बात करते करते ना मेरे मुंह में भी पानी आ गया। एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रामा आया हुआ है जो कि एपिसोड्स अभी तक उसकी वेट करना पड़ता है कि आएगी तो हम देखेंगे, लेकिन यकीन मानिए इंतहाई खूबसूरत सा ड्रामा है, बहुत अच्छा है, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। और ड्रामे का नाम है दरे निजात, निजात का रास्ता ढूंढने का दर। दुरे फिशा उसमें मेन एक्ट्रेस हैं और शहरयार मुनव्वर हैं। उस ड्रामे की स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसी तरह एक दिन हम ये डिस्कशन का हिस्सा भी रखेंगे कि दरे निजात हमें कहां से मिलेगी। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो कि जिससे हमें निजात मिल सकती है, जिससे हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो इसलिए शायद नहीं होते कि हम उन्हें कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिस तरह किसी इंसान को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि लेट इट गो एंड मूव ऑन। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो इसी के साथ आपको सुनाते हैं दरे निजात का ओएसटी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।

दरे निजात का ये खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। ना सिर्फ ये ट्रैक बल्कि अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे तो देखना अभी शुरू कर लीजिए। उम्मीद है कि आप जब तक पहुंचेंगे आखिरी किस्त आ चुकी होगी। मेरे लिए लेकिन ये फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की, ये ड्रामा देखना मैंने शुरू किया एक वीक पहले और मैंने उसे कल ख़त्म भी कर दिया। मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब कोई चीज़ शुरू कर लेता हूँ तो बस उसे ख़त्म करके ही जान छोड़ता हूँ। अब ये पता नहीं कि अच्छाई है या फिर बुराई। You can call us on 0115-710-0971, join us on air, or you can message us as well. आज बात हो रही है बिरयानी पे। हमारी डिस्कशंस हैं आज कि अपने घर के मेंबर्स को बिरयानी इंग्रेडिएंट्स असाइन करें। जी हाँ, यानी कि आप हर एक को असाइन करें कि कौन क्या है। मिर्ची हर बात गरम करने वाला, आलू हर जगह मौजूद, इलायची जिससे अचानक इंकाउंटर हो और मूड बदल जाए, रायता जो सबको ठंडा करता है, फ्राइड ओनियन थोड़ा ड्रामेटिक लेकिन जरूरी है, और गोश्त का बेस्ट पीस जिस पर सबकी नजर होती है। कई लोग ना बोनलेस पसंद करते हैं और कई लोग ना ऑन द बोन पसंद करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं? कई लोग तो फैट्स भी बहुत पसंद करते हैं, यानी कि जो चर्बी होती है गोश्त की। परफेक्ट फैमिली वो नहीं जहां डिसएग्रीमेंट नहीं होता। परफेक्ट फैमिली शायद वो है जहां डिसएग्रीमेंट के बावजूद टेबल नहीं छोड़ी जाती, और इसमें बरकत भी है और यकीन माने आप इंजॉय भी करेंगे अगर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाए। मानते हैं हर एक की अपनी रूटीन है, अपनी टाइमिंग है, मसरूफियत भी है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाएं और एक दूसरे से बातें करें, डिस्कस करें, आज आपका दिन कैसा गुजरा, आज आपने क्या किया, फिर उसके बाद कोई टॉपिक छेड़ दीजिए, कोई किस्सा सुना दीजिए, कोई बात कर लीजिए। बातें करने से ना दिल बहल सा जाता है, और अगर कोई आपके दिल पे बोझ है तो वो उतर भी जाता है। कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा आया था शरपसंद, जिसमें नुमान एजाज ने लीड रोल अदा किया। हालांकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने आज तक बहुत अच्छे अच्छे रोल अदा किए हैं, लेकिन शरपसंद में उनका नेगेटिव रोल था। वो भी एक बहुत कमाल का ड्रामा है जो कि हमारी, देखिए ये जो ड्रामे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी नेगेटिव रोल्स होते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नेगेटिव रोल वाले लोग भी पसंद आते हैं। शायद इसलिए है क्योंकि उनका माइंड नेगेटिव चलता है। अक्सर इनकी मिसाल ऐसी दी जाती है कि कुछ लोगों का माइंड चलता है ना राउंड क्लॉक की तरह घूम रहा होता है, लेकिन कई लोगों का माइंड एंटी क्लॉक चलता है, जो कि हर बात के एंटी होते हैं और उन्हें हर बात पे कोई ना कोई अपना कमेंट देना होता है, अपना फीडबैक देना होता है, और वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि शायद वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। इंसान की सोच जो है ना, उसके जहन से जितनी भी आपकी डिप्रेशंस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें। ठीक है, इंसान है, गुस्सा भी आता है, वक्ती तौर पे कोई बात भी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान को अजियत दें। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जब आप अपने आप को अजियत देंगे तो यकीनन उनको भी तकलीफ होगी। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, खुदा तो देखता है, ऐ बंदिया, सुनते रहें फजा 97.1 FM।

खुदा तो देखता है बंदिया, थोड़ी तो शर्म कर। लेकिन शर्म क्यों करें भाई, कुछ लोग तो बड़े बेशर्म होते हैं जिनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होते हैं दरअसल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे लफ्जों को बिल्कुल ना पकड़िएगा, बल्कि इसका मतलब समझिएगा। वैसे कहते हैं कि हर लफ्ज के दो मायने होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी सोच पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं या फिर नेगेटिव। आप सब जानते हैं कि जो मेरा ये शो है इसमें डबल डोज भी होती है, और डबल डोज ऑफ द शो में आपको सुनाता हूँ एक और खूबसूरत सा ट्रैक, और उसके बाद फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। क्योंकि ये ट्रैक जब मेरे सामने आया ना, शाम भी ढल रही है, तो सोचा क्यों ना आपको मैं ये ट्रैक सुनाऊं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जो कि ओल्ड स्कूल हैं उनके लिए है, और जो हमारी आज की जनरेशन है उनके लिए भी है।

0: अमृता कौर की आवाज में, जो कि एक लाइव परफॉर्मेंस थी, विरसा हेरिटेज। आपका कभी इत्तेफाक हुआ लाहौर में जो हवेली है वहां जाने का? वहां पर प्रोग्राम विरसे के बहुत से प्रोग्राम आया करते थे पीटीवी पे,
1: जब से राधा,
0: और अभी भी आते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। मेरा इत्तेफाक हुआ था लास्ट टाइम लाहौर जाने का, और जहां विरसा के प्रोग्राम होते थे वहां पर हमें इनविटेशन आई। और यकीन जानिए कि वो जो माहौल है मौसीकी का, म्यूजिक का, आपको हर जगह नहीं मिलता इस शोर गुल की दुनिया से दूर। सांसों की माला

सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जी हाँ, ये ओरिजिनल ट्रैक था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, और उसके बाद ना जाने कितने लोगों ने इसे गाया, परफॉर्म किया। और अगर बात की जाए कवाली की, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को फॉलो करते करते, इंस्पायर होते होते, वो एक लेजेंड थे। और आज ना जाने कितने लोग हैं और वो पैसा भी कमा रहे हैं इससे, और बहुत कुछ हासिल भी कर रहे हैं, उनका नाम भी हो रहा है। हालांकि उनका अपना कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन हर कोई ना तो कवाली कर सकता है, ना ही कोई हर कोई गा सकता है। बहुत से सिंगर्स हैं आज के दौर में कि अगर आप उनसे कहें कि हमें लाइव गा के सुनाएं विदाउट म्यूजिक, तो वो नहीं गा सकते। उनसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपकी आवाज अच्छी है तो आप गाना भी अच्छा गा लेते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और मैं गाना बिल्कुल भी नहीं गा सकता। हालांकि मेरे कई दोस्त हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं गाने की कोशिश करता हूँ, तो बस उनका मजाक सुनते सुनते मैंने गाने की कोशिश ही खत्म कर दी। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। नॉट ओनली FM बट यू कैन हियर अस ऑन डैब एज वेल। आज बात हो रही है बिरयानी पे, तो चलें बात करते हैं द प्रेशर कुकर एनालॉजी। और यहाँ बिरयानी से हम प्रेशर कुकर पर आ गए। प्रेशर को रिलीज ना करो तो प्रॉब्लम कुकर की नहीं होती, प्रेशर की होती है। जो इंसान है वो भी प्रेशर एक्यूमुलेट करते हैं। कन्वर्सेशन, फ्रेंडशिप, फैमिली सपोर्ट, लिसनिंग, कभी कभी सोल्यूशन देना भी जरूरी नहीं। किसी को सिर्फ ये कहना, बताओ मैं सुन रहा हूं या मैं सुन रही हूं, बहुत बड़ी बात होती है। यकीन माने कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ना अच्छे लिसनर की जरूरत होती है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर कोई आपके सामने बैठा है, आपका कोई भी हो रिश्ते में, बहुत परेशान हो, तो आप उसे कहिए कि मैं सुन रहा हूं, सुनाओ, बोलो जो दिल में है कहो। लेकिन हर एक को अपनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन माने अगर आप उसकी बातें सुनेंगे, तो आप उनकी बातें ये सोच कर सुनिए, बल्कि महसूस कीजिए उसकी फीलिंग्स को। ऐसे न सुने कि आपने कोई जवाब देना है, बस आपने सुनना है, उसकी तरफ देखते जाइए और सुनते जाइए, वो आपकी आंखों में डूब कर अपने दिल का सारा हाल कह डालेगा। और कुछ लोगों के पास ऐसा हुनर होता है कि लोगों से बातें कैसे निकलवानी है, दे आर एक्सपर्ट ऑन इट, ट्रस्ट मी। बस उन्हें छेड़ दो, बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अजनबी से अगर आप जो चाहें अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो क्या अजनबी से बात करना सेफ है, करनी चाहिए या नहीं? ये भी एक हमारी लेयर है, और ये वो लेयर है कि जिसमें हम अजनबियों से बातें करते हैं। हम किसी से पहली बार मिलेंगे तो हम अपनी जिंदगी की पूरी राम कहानी की समरी सुना डालेंगे। क्या ये सही है? डिपेंड करता है कि वो अजनबी है कौन। आपको कहीं सफर में मिला, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन में, बस में, या फिर ट्रेन में, कहीं भी बैठे हुए कोई अजनबी आपको मिल गया, आपने बात कर डाली, ना आपको नाम जानता है, जानती है, और ना ही आपको जानता है, तो आपको जो जी चाहेगा आप कह डालेंगे, यानी कि अंदर का जो गुबार है आपने निकाल दिया। लेकिन अगर आप उसी कम्युनिटी में रहते हैं और लोग अगर आपको मिलते हैं और आप उनको अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर दें, तो वेयर एग्जैक्टली इट्स गोना एंड। चलिए जी, इसी के साथ हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा ट्रैक। ये मैशअप है हम और इंतजार का।

0: जानते हैं आज शो के बाद आपने क्या करना है? इस शो के बाद किसी इंसान को मैसेज कीजिए जिससे आपने काफी अरसा हो गया हो बात ना की हो, सिर्फ इतना पूछ लीजिए, हाउ आर यू? सिर्फ पूछ लीजिए आप कैसे हैं, देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। और यकीन मानिए बहुत से लोग ऐसे हमारी जिंदगी में हैं जो कि हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन हमारी उनसे रोजाना बात नहीं होती, लेकिन जब भी बात होती है तो ढेरों बातें होती हैं करने के लिए, महसूस करने के लिए। कुछ लोग आपके इतने करीब होते हैं कि आपकी उनकी आवाज से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि उनका मूड कैसा है। लेकिन मानिए कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ पक रहा होता है, इसलिए जजमेंट कम कीजिए, काइंडनेस ज्यादा दिखाइए, बिकॉज यू कैन सी द राइस बट यू कैन नॉट ऑलवेज सी द हीट अंडरनीथ। यानी कि वो जो चावल है, वो जो बिरयानी पक रही है, वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद पक रही है। जिस तरह से इंसान बहुत सारी ठोकरें खाकर, कई लोग तो कहते हैं कि ये इंसान ठोकरें खाकर इंसान बना है और ये भी कहा जाता है कि ठोकरें खाने से इंसान ठाकर बनता है। अकल जो है वो ठोकरें खाने से नहीं, बादाम खाने से आती है। चलिए ये तो हुआ मजाक, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनसे वो गुजरता है, बहुत सी लेयर्स हैं जिनको आपको टापना पड़ता है, और उन लेयर्स को टापने के बाद आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव सा आ जाता है, अंदर आपको एक सुकून सा मिल जाता है, आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो मर नहीं जाती, लेकिन आप उन ख्वाहिशों को इतना परस्यू नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि हाँ ख्वाहिश तो है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश ना भी पूरी हुई तो क्या, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। एक और बात, हर इंसान अपनी जिंदगी के 10 साल के बाद जाके तब्दील हो जाता है, इसलिए उस उम्र को गिना जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। 10 साल का बच्चा, 20 साल का जवान, 30 साल का एक प्रीमेच्योर आदमी, 40 साल का एक मेच्योर आदमी, और 50 साल यानी कि हाफ सेंचुरी करने के बाद एक और शख्स उभर के सामने आता है, ना सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि अपने सामने भी। उस दिन अरशद वारसी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और उसने बड़ी मजे की बात की। वो ये कहता है कि उम्र से तजुर्बे का कोई ताल्लुक नहीं, जरूरी नहीं कि कोई एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है, उसने खैर बूढ़ा कह दिया, 50 साल के बूढ़े नहीं होते बाय द वे, तो 50 साल का एक बूढ़ा आदमी है, ये उसकी जुबानी, अरशद की जुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ, अपनी नहीं। तो अगर कोई 50 साल का है तो बुरा ना मानिएगा। उन्होंने कहा कि 50 साल का बूढ़ा आदमी भी इतना अकलमंद नहीं हो सकता, बेशक उसका तजुर्बा जितना भी हो सकता है कि उसका तजुर्बा आपके किसी काम ना आ सके और उसमें अकल ही ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 25 साल का लड़का, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, उसमें अकल ज्यादा हो। हर इंसान के पास अकल तो होती है, अल्लाह ताला ने कमी नहीं रखी, लेकिन ये इस पे मुयस्सर है, इस पे डिपेंड करता है कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इसी के साथ देखते हैं जी, हमें दो कॉल्स एक साथ आना शुरू हो गई, पहले देखते हैं कि पहली कॉल हम नहीं, वो ड्रॉप हो गई है, अब हम लेंगे दूसरी कॉल। जी हाँ, हेलो रेडियो फजा, जी वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे आप? खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं पूरा पुरउम्मीद हूँ कि जी उमर ही बात कर रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, और मैं गाड़ी में था तो आपका प्रोग्राम सुन रहा था, जी नहीं चाह रहा था कि आपको डिस्टर्ब करें, और
0: चले
1: और फिर मैंने कहा ये भी अच्छा नहीं होता कि आप बैठे हैं तो आपको कॉल करनी चाहिए।
0: आपने हमें अब तो डिस्टर्ब कर ही दिया है, तो चलें बात कर लेते हैं आपसे। उमर, बिरयानी सुन के तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद खाने पीने की बात हो रही है ना।
1: सही बात है,
0: लेकिन ये लेयर्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी की कितनी लेयर्स होती है ना।
1: बेशक जी, बहुत सारी लेयर है जिंदगी की जो हमें कभी, बिरयानी का लफ्ज ही ऐसा है और ये पहली चीज तो दिमाग में यही आता है कि खाने की बात है
0: जी,
1: लेकिन दरअसल हकीकत कुछ इसके बरक्स भी होती है।
0: तो आपका क्या कहना है जिंदगी की जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं अभी सुन रहा था आपकी बातें जो आप कर रहे थे, और जैसे एक बच्चों को कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है, लेडीज के बारे में आपने बात की, लेयर्स ऑफ लाइफ। लेकिन साहब टू बी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मेरा तो यही कहना और मानना है कि अपनी जिंदगी को जितना सादा और सिंपल रखेंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा भी होगा और इजी भी होगा माने जाके दें।
0: लेकिन हम क्या करें उमर, लोगों को देख देख के हम उन जैसा बनना की कोशिश भी करते हैं, तो जो लेयर उन्होंने चढ़ा रखी हम चाहते हैं कि वो लेयर हम भी चढ़ाएं।
1: वो बात आ गई है ना कि अगर लोगों को देख देख के हम ऐसा करेंगे तो इन दी एंड यू विल बी द ओनली वन हु विल बी इन द टाइड, यू विल बी वन द वन हु विल बी एट द डीप एंड ऑफ द वाटर। आप अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल देंगे कि कभी कभार वो निकलना मुश्किल हो जाता है। सो डोंट बर्डन योरसेल्फ विद टू मच, उतना ही अपने ऊपर बोझ डालें जितना आप आसानी से उठा सकते हैं।
0: आपकी जिंदगी में जो लेयर्स अभी तक चढ़ी हैं, या आप अपनी जिंदगी को मुड़ के पीछे देखते हैं, तो ये बड़ा आम और सादा सा सवाल ये है कि अगर ये कहा जाए कि अगर आपको वही जिंदगी दोबारा से मिले, या फिर से आप जवान हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बूढ़े हैं, लेकिन यानी कि वो एज जिसमें हम, यानी कि 18-20 साल की जो हमारी उम्र होती है, बड़ी बेबाक सी एक उम्र का वो हिस्सा है, और अगर आपको, आप उस दोबारा उस एज में चले जाएं, तो आप क्या करेंगे?
1: तो भी मैं अपने आप को चंद दिन पहले एनालाइज कर रहा था कि मैंने कहां कहां पे, वो टाइम ऐसा जकी साहब, वी वुड लव टू हैव दैट टाइम बैक। और उस वक्त ये था कि कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं कि हमने टाइम की कदर नहीं, वक्त हमने बोल रहा है कि अपनी बहुत सारी चीजें जो मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मैंने बहुत कुछ छोड़ा, वक्त की कदर नहीं की, टाइम की कदर नहीं की, उस क्या कहते हैं वो जो पीरियड होता है उसकी कदर नहीं की। अगर कर सकते तो हो सकता है कि आज कुड बी मेनी मोर थिंग्स कुड बी बेटर शेप अब, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त वो काश जो है ना, वो काश रह जाता है, काश यार में ये कर लेता, काश यार में वो कर लेता।
0: अच्छा ये बताएं उमर कि आप कभी जिंदगी में पछताए हैं, कि आपको पछतावा हुआ हो कि यार ये मैंने जो गलती की है, मैंने काश ये गलती ना की होती, क्या ऐसा होता है?
1: होता है, बिल्कुल होता है, और मैंने बिल्कुल सच्ची बात कहूंगा कि बिल्कुल होता है, ऐसा होता है मुझे। इवन दो कि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि उमर जिंदगी में जो कुछ मर्जी हो, किसी बात के ऊपर पछताना नहीं। लेकिन I tried to, but इसकी हकीकत यह कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बस में नहीं होता, आपको वो जो है रिग्रेट रहता है
0: जी।
1: And it's happened, it's part of life होता है जिंदगी, लेकिन कोशिश यही करें अच्छी choices बनाएं, ठीक है, अपनी तरफ से अपने काम की, वक्त की कदर करें, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालें, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा ना रखें, कीप योर लाइफ एज सिंपल एज यू कैन। जितनी सादा और सिंपल लाइफ आपकी होगी, उतनी आप अच्छी तरह से जिंदगी को जी सकेंगे।
0: जितनी खूबसूरत आपकी ये बात है ना, यकीन माने जितनी जिंदगी खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत आपकी ये बात है कि अपनी जिंदगी को बिल्कुल सादगी से गुजारिए। और ये बाकी ये बात तो प्रैक्टिस में आती है कि जितने भी लोग अपनी जिंदगी को सादगी के से गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस कम है, है ना?
1: बेशक बेशक, कोई शक नहीं, ये हकीकत बात है। और लगी भाई जितनी भी मैंने देखा है अपने बड़ों से सीखा भी है और सुना भी है, ठीक है, कि वो वाकई यही बात है कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिस तरह कुछ हमारे बुजुर्ग गुजार भी रहे हैं
0: जी,
1: जिस तरह उन्होंने सादा रखा हर चीज, और हम अगर इस तरह उसको अडॉप्ट कर लेना तो बहुत सारी हमारी मुश्किलात जो है ना वो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती ना, क्योंकि हम कंपटीशन के दौर में हैं उमर, और इस कंपटीशन के दौर में हमें लगता है कि हम दूसरे से पीछे रह गए हैं। ये भी बात बड़ी सादा सी और बड़ी पुरानी बात है कि हमेशा अपने नीचे देखना चाहिए, और तब इंसान को अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है। हमसे ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि
1: जितना भी उसका शुक्र अदा करें नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसने जो अल्लाह के फैसले सबसे बेस्ट फैसला होता है, उसने जो हमें जिन नेमतों से नवाजा हमें उनको क्या कहते हैं पहचानने की जरूरत है।
0: रिग्रेट की बात की ना आपने, तो उस पर मैं ये छोटी सी बात करना चाहूंगा कि रिग्रेशन जो है, रिग्रेट करना, इंसान रिग्रेट तो जरूर करता है, मलामत भी करता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ वो उस वक्त के हिसाब से शायद ठीक था और ऐसा होना था, शायद इसमें हमारे लिए कोई अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी थी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और जब वो लेयर होती है हमारी मुश्किल का जो दौर चल रहा होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन न जाने उसमें हमारे लिए क्या बेहतरी होती है, फिर हम सोचते हैं कि यार इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है। चलिए उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का।
1: आप जारी है, सारी रखे, इट्स बीन लवली स्पीकिंग टू यू, और बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह सुन के आपको, और मेरी तरफ से हमारे तमाम लिसनर्स को गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये है उमर जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। अगर आप भी करना चाहें देन यू आर मोर देन वेलकम। वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और जाने से पहले मैं चंद बातें आपसे करता चलूं। द फाइनल प्लेट, जिंदगी का टेस्ट किस चीज से बनता है। अब बिरयानी तैयार हो चुकी है, ढक्कन उठ गया है, खुशबू आ रही है, प्लेट सर्व होने वाली है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि परफेक्ट बिरयानी क्या होती है। हर एक का जवाब यकीनन डिफरेंट होगा। कराची वाला कुछ और कहेगा, लाहौर वाला कुछ और हैदराबादी वाले कुछ और कहेंगे। किसी को आलू चाहिए, कोई आलू को क्राइम समझता है, किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को माइल्ड चाहिए। इसी तरह से जिंदगी का ये एक मामला है, हम सब एक ही रेसिपी से खुश नहीं हो सकते। सोसाइटी हमें एक स्टैंडर्ड रेसिपी देती है, स्टडी, जॉब, मैरिज, हाउस, चिल्ड्रन, मनी, रिटायरमेंट एंड देन डन। लेकिन क्या हर इंसान की हैप्पीनेस की रेसिपी सेम है? नो। किसी के लिए सक्सेस बिजनेस है, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए सुकून, किसी के लिए क्रिएटिविटी, किसी के लिए सर्विस, और किसी के लिए simply enough time to sit with people they love. अगर आपको अपनी जिंदगी की बिरयानी में एक ingredient ज्यादा करना हो तो क्या होगा? पैसा, मोहब्बत, वक्त, फैमिली, दोस्ती, सुकून, कॉन्फिडेंस, फेथ, एडवेंचर या सिंपली सुकून? अगर एक ingredient कम करना हो तो वो क्या होगा? स्ट्रेस, ईगो, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया और पीपल प्लीजिंग। एक फाइनल पैगाम है आप सबके लिए और उम्मीद है कि आपसे अगले हफ्ते फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक और डिस्कशन के साथ। आज हमने शुरुआत की बिरयानी से, लेकिन बात एक्चुअली हम सबकी थी। ये जिंदगी भी बिरयानी की तरह है, कुछ लेयर्स खूबसूरत, कुछ स्पाइसी, कुछ सॉफ्ट, कुछ हमें पसंद कुछ हम प्लेट की साइड पर कर देते हैं। कभी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, कभी रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कभी अंदर ही अंदर एक प्रेशर होता है और कभी सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड भी। लेकिन लाइफ का मकसद परफेक्ट रेसिपी बनाना नहीं, अपनी रेसिपी समझना है। दूसरों की प्लेट देखकर अपनी प्लेट को जज मत करें। किसी की लाइफ में मसाला ज्यादा है, किसी की लाइफ में सुकून ज्यादा, किसी की प्लेट अभी हाफ एम्प्टी है और किसी की बिरयानी अभी दम पर है। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव अदर पीपल सम टाइम, और सबसे जरूरी क्या है, जिंदगी की हर लेहर को टेस्ट करें। सिर्फ ऊपर वाले चावल देखकर फैसला ना करें। मैं हूं आप सबका होस्ट और आप सुन रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड, जहां सोसाइटी की हर लेयर खुलती है अनफिल्टर्ड। आप सबसे इजाजत चाहूंगा नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, बुध की शाम 6 से लेके 8 तक, एक नई डिस्कशन, एक नई बात, एक नई गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटिए, यकीन माने बांटने से बढ़ती है घटती नहीं है। अपने दिल साफ कीजिए, नफरतों को दूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत तो है ही मगर छोटी भी है, क्योंकि जब ये गुजर जाती है तो छोटी सी लगती है। बड़ी उम्र की दुआ कीजिए लेकिन सेहतमंद उम्र की दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: 5916-8231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
4: Get ready to move.
5: It's all about the beats.
6: Wow,
7: only you are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

हुई से तुमको देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फैजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा ऑन 97.1 FM।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: It's commercial time.
5: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.